0: पिता सम तरला पाओ पिता समझावेंगे पिता समझावेंगे पिता
1: समझावेंगे पिता समझावेंगे।
0: धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज समझा इन्हां अपने सिखां नूं ए तेरी गोद विच आण के रोज बैंदे ही इन्हां नूं तपदियां सड़दियां नूं होर कोई जगह नहीं मैं होर थावां नहीं जिस पे करूं बेनती रोज कहिंदे ही आउंदे भी तेरी गोद विच ही प्यो भी तेनूं मानदे ही साहिब माता नूं साहिब कौर नूं मां भी मानदे ही मगर एक दूसरे दी लत्तां खिंच दे एक दूसरे दे दुश्मन ही है तेरे सिख हे मेरे सतगुरु इस पंथ उत्ते बौड़ी कर हे मेरे गरीब नवाज पातशाह इस पंथ उत्ते तरस खा रहमत कर बौड़ी कर इस पंथ दी इन्हां विच आपस विच प्रेम बख्श कदी तू गुड़ती दे के क्या सी सच कहूं सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो सतगुरु ए उल्टे चले गई नफरत कर दे एक दूसरे ना हे मेरे गरीब नवाज तुसी गुड़ती दिती सी जिन प्रेम कियो ए नफरत कर दे इन्हां नूं तरस कर रहम कर इन्हां दे पैरां तों लैके सिर तक पै कोड़ नूं अपनी नजरे अनायत नाल ठीक कर तरस करो महाराज इस पंथ दे उत्ते ए तेरी शरण विच आण के बाणी पढ़दे ने ना को वैरी ना ही बगाना ए झूठ मारदे ने तेरी शरण विच इन्हां ने सारे ही वैरी बनाए ने इन्हां ने सारिआं नूं बगाने समझिआ है हे सतगुरु ए उत्तों उत्तों कहिंदे हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई इन्हां दे अंदरला कोट ठीक करो ए जितना बाहरों सोहणे लगदे ने गुरु गोबिंद सिंह साहब अंदरों भी सोहणे बनाओ इन्हां नूं हे मेरे मालिक इन्हां दा इलाज करो मेरा वैद गुरु गोबिंदा हे मेरे मालिक वैद बन के इन्हां दे अंदरले कोट नूं ठीक करो पंथ नूं एक दूसरे नाल प्यार कराओ ए ते सारे संसार नूं गल विच लकड़ी लैके इन्हां कहना सी अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे तुसी ते अमृत छका के भाई कन्हैये जी ने वर्गे प्यारियां नूं कहा सी तू पास हो गया है तेनू कोई बगाना नहीं दिसदा हे सतगुरु असी एक संगत विच बह के एक थाल दा कड़ा प्रसाद छकन वाले एक लंगर दे विच पंगत विच बह के लंगर छकन वाले असी मन करके एक दूसरे तो बड़े दूर हो गई सतगुरु तरस खा साडे दे उत्ते मेरे सतगुरु कहण लगे मैं खिमा लै लिया ते मन परमेश्वर दे चरणा विच वेच दिता है सिद्धो जिदन तो मैं खिमा लै लिया परमेश्वर कोलो जिदन तो मैं नीवा पान लै लिया परमेश्वर कोलो ते मन जड़ा खराब करदा सी ए वेच दिता है सतगुरु अगे उदन तो खरा खरा आखे सब कोई बोलो खरा खरा फिर बोलो जी खरा खरा आखे एक दो शब्द हुंदे ने एक खोटा ते एक खरा जिदे मन विच कोड़ होवे आपां कहिंदे मन दा औगणयारी कंत ना भावे मन की खोटी खोट कमावे मन दा खोटा बंदा खोट कमाउंदा है इत्थे गल्लां कुछ होर करदा है उत्थे कुछ होर करदा है ओ प्यारियो किथे तुर जाओगे किथे जाओगे केड़े साहिब दे अगे ओ साहिब दे अगे जाओगे जेड़ा साहिब सतगुर अंदरों निरवैर है सतगुर उस गुरु दे सामने पेश होना जाके जेड़ा अंदरों निरवैर है उस गुरु दे सामने एक दिन जाके पेश होना है सतगुरु सबना दा भला मनाएदा बोलो सतगुरु उस गुरु दी शरण विच जाना है उस गुरु दे सामने जाना है केड़ा मुंह लेके जाओगे केड़ा कोट जाके विखाओगे मालक नूं अपने अंदर नूं शुद्ध करो तरला पाओ एक बार नक रगड़ो आण के गुरु दे अगे हे मेरे सतगुरु मेरे अंदर दी बीमारी ठीक करो मेरे साहिब कहिंदे जिदन तो मैं मन गुरु नू दे के खिमा ओदे कोलों लै लिया उदन तो खरा खरा आखे सब कोई जे मके गया वा ते अंदरों बाहरों एक सा ओ अखां वालियां नू नजर आ गया उन्हें क्या खरा आ गया वो पैरी पै गए जिन्हां नू खरा ज्ञान सुनाया मके मदीने वालियां नू सुनाया मके मदीने वाले काजी पैरां ते डिग पे गढ़ बगदाद वालियां नू सुनाया गढ़ बगदाद नीवा हो गया मुल्तान विच गया मुल्तान वाले पैरी पै गए क्योंकि मन दे दिता सी ते खिमा गुरु कोलों लैके खरा हो गया सा खरा नानक पारख आप बोलो नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया मेरे सतगुरु दे चरणा च बेनती करो मेरे साहब कहिंदे ने सिद्धो ए सारी करामात अमृत दी बनी ए अमृत करके मेरा मन इना शुद्ध हो गया है खरा खरा आखे सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पियंत मुए नहीं जानिया खांदिया पींदिया जिन्हां चिर मुंह दे स्वाद लाए सी उन्हां चिर ते मरन दा ही ना पता लगा उन्हां चिर ते मरन दी जाच ही ना आई ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਬੋਲੋ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ, ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਆ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ। ਇਤਨਾ ਬਾਵਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਤਾਂ

बारक बारक मुख मांगे सो देना, बारक मुख मांगे सो। ए बन गया मेरा पुत, ते आज तो हुण जो मेरा पुत मुंह चो मंगे इनू देना है। ओ आर्डर करके मुड़िया, उन्हें कह दिता, गया कोल गल नाल फिर मत्था चुमया, गल नाल लाया ते आख्या, मैं कह दिता है दाता देने वाले नू, सचेत होके बैठो, मैं कह दिता है। आके गया ना कि बारक मुख मांगे सो देना, उन्हें आख्या पिता कृपाल आ गया है, कीनी बारक मुख मांगे सो देना। उन्हें ते एक गल कह के मुड़िया, ते पिछे बालक ने आख्या मेरी ते हुण भोखी कोई नहीं रह गई, मैं मंगा की। नानक बारक दर्स प्रभ चाहे, हुण मुक गए ट्रैक्टर मंगने, मुकियां गड्डियां मंगनियां, मुक गईयां दुनिया दियां दौलतां, हुण ते नानक बारक दर्स प्रभ चाहे। बोलो नानक बारक, हुण ते इहनू पता लग गया असली दात की आ। देख जीवां गुर तेरा दर्शन दे।

जिन्हें ज्ञान का सुरमा दिता ते सतगुरु एक बोहित नजर आया, गुरु बोहित तो बिना रब का पार वाला पासा पाया ही नहीं जा सकता। सतगुरु, गुरु, गुरुदेव जां मुर्शद शब्द वरत लिए, गुरमत ने गल परपक करा दिती है कि साई दे दर ते केवल जा ही हो सकता है जिन्हें सतगुरु के चरणा का आसरा ले। जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहना कि गुरु तो बिना अध्यात्मक जीवन कमाया नहीं जा सकता। ते मेरे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच दातार ने प्रमाण दिते ने, कहिंदे ने एक हुंदा ज्ञान बाहर दा, बाहर दा ज्ञान, बाहर दी लियाकत पुस्तकां नूं पढ़ के केवल ता केवल बाहर पढ़े लिखे लोकां दी संगत करके मिल सकदी है, पर जिहड़ा आत्मक जीवन है वह गुरु तो बिना कदी नहीं मिल सकता। साहिब कृपालू जी ने अमृत बाणी विच बख्शिश कीती है कि गुरु तो बिना आत्मक जीवन नहीं। कई बार आप समझने के किया बार दे लफ्जां नाल, बार दे ज्ञान नाल सानू परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हजूर ने बाणी विच दो तीन प्रमाण दिते ने, कहिंदे ने पहली गल कि बार दा जिहड़ा अकल दा ज्ञान है, अकल दे ज्ञान नाल अमेओ रस नहीं चख्या जा सकता। अंदर दा जो ज्ञान है, आत्मक जीवन है, वह सतगुरु के दिते हुए शब्द द्वारा ही चख्या जा सकता है। फिर सतगुरु ने प्रमाण दिते ने, कहिंदे ने बाहर दा ज्ञान ता इस तरह है कि जिवें बाहर कोई मनुख चानण कर देवे, अंधकार होवे, दीवा बालदा चानण हो जाए, सूरज चढ़े ते किरणा वह हनेरे नूं खत्म कर देन, चंद्रमा की चाननी जिहड़ी है अंधकार नूं खत्म कर दे। पर धन गुरु अंगद साहिब कृपालू कहिंदे ने बार हजारां सूरज चढ़ जान, सैकड़े चंद्रमा आसमान ते आ जान, पर अंदर दा चानण केवल ता केवल गुरु दे सकदे ने। गुरु तो बिना बंदे दे अंदर कदी चानण हो ही नहीं सकदा। सतगुरु गुरु अंगद साहिब दे शब्द असीं पढ़ने आ ते रोज ये शब्द पढ़िया जांदा है, जे सौ चंदा उगवह, शलोक है आसां की वार दा दूजा। ते दूजे शलोक तो विचार शुरू कीती है कि कहिंदे जे सैकड़े चंद्रमा आ जान, हजारा सूरज चढ़ जान, पर गुरु तो बिना हनेरा है। जेसो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, पर प्यारे एते चानण खुंदिया गुरबिन घोर अंधार। इन्ना चानण खुण दे बावजूद भी गुरु तो बिना हनेरा है। सतगुरु ने देखो साडे अज दे सवालों का उत्तर भी बाणी भी दिता है, क्योंकि असीं कई वारी सोचने आ मनुख अकल दे बुद्धि दे तल ते बहुत अगे निकल गए, दुनिया बिल्कुल छोटी हो गई है। ते ओ सफर जिहड़ा असीं कई महीने कई सालां विच करदे सां, अज इन्नी कु बंदे दी अकल ने काम कीता कि कई सालां दा सफर कुछ कु महीनियां विच तय हो सकदा है। सच जाणो महीने भी नहीं, कुछ कु दिनां विच, दिन भी की कुछ कु घंटियां विच कई सालां दा सफर तय कर सकदा है। ते दातार जी कहिंदे ने अगे मनुख दी रसाई सी केवल धरती तक, कि धरती दे एक खिते तो चलिया ते दूसरे खिते ते पहुंच चकदा सी। पर याद रखी मना कि बाहर ते तू दुनिया बिल्कुल छोटी कर दिती, जिहड़ा सफर सालां दा सी ओह घंटियां विच तय कर लिया, जिहड़ी गल अगे तू कई महीनियां विच दूजे कर पहुंचांदा सी एक खिंड विच पहुंचा दिती। पर याद रखी बाहर दे सफर अकल नाल छोटे हो सकते ने, पर अंदर दा सफर अपनी अकल नाल नहीं, अंदर दी मंजिल केवल गुरु दी कृपा नाल मिलदी हुंदी है। साहिब कृपालू जी ने प्रमाण दिता है बाणी विच, कहिंदे ने मनुख इन्नी कु तरक्की कर जाएगा कि अख झमकण दा समा किन्ना कु हुंदा है, अजे तां केवल ये चंद्रमा ते मंगल दे ग्रह तक अपनी रसाई पिया बणांदा है। साहब कहिंदे ने अख झमकण दे समय विच बंदा सैकड़े आसमान उपर जा सकेगा, अख झमकण दे समय विच सैकड़े आकाश देख के आ जाएगा, पर कहिंदे ने बाहर दा सफर अख झमकण विच तू सैकड़े आसमाना दा तय कर लेगा, पर अंदर दा शब्द गुरु तो बिना नहीं। अंदर दा सफर करनगे जिन्हां उत्ते गुरु की नजर होवेगी। साहब ने शब्द वरते ने, कह लगे परमाणु पर जंत आकाश है, दीप लो शै खंडन है, कि जे तू छोटा जा अणु भी बन जाए, परमाणु बन जाए, ते अख झमकण विच कई दीप कई आकाश घूम के आ जाए, पर प्यारिया बाहर दे सफर अकल नाल हो जांदे ने, अंदर दी मंजिल गुरु तो बिना नहीं मिलदी। परमाणु पर जंत आकाश है, दीप लो शै खंडन है।

सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच खैति सच नानक खुशी भी सच।

मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे पाक पवित्र अते निगी गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनो मन बिरतियां एकागर करके बैन अते सुनन दी किरपालता करियो। आप कल दे रोज तो लड़ीवार कथा सरवण कर रहे हो भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों। ए सलोक कल दे रोज शुरू कीता सी जित दिहाड़े तनवरी साहे लै लिखाए मलक जे कन्नी सुनीदा मुंह दिखाले आए जिंद निमाणी कढ़िए हड्डां कू कड़काए। इथों तक आप कल दे रोज सरवण कर चुके। इस तो अगे साहे लिखे ना चलनी, चलनी दा मतलब हुंदा है टलना। जो साहा लिखिया गया दिन मुकरर हो गया कि ऐस दिन तेनू चलना पैना है, इस वक्त दे उते रुखसत होना पैना है। ओ गिनिया मिथिया साहा बाबा फरीद साहब जी कहन लगे चलन वाला नहीं है, टलन वाला नहीं है। ना ते उस साहे नू टलन वास्ते किसे अप्रोच ने कम देना है, ना उस घड़ी नू मौत वाले पल नू टलन वास्ते धन दी रिश्वत ने कम देना है, ते ना कोई मददगार ही उस वक्त बन के बौड़न वाला है कि जो इस गल दे विचकार विचोला बन के कुछ सवास कुछ घड़िया कुछ दिन कुछ पल जीवन गुजारन वास्ते होर दिवा देवे। कोई भी विचोला बनेगा नहीं और बनना किसी के अख्तियार विच है भी नहीं। कहन लगे वह गिनिया मिथिया पल टलन वाला नहीं है। एक बेनती करा अज साडे पास सवास ने पर सानू सवासां दी कीमत सवासां दी सार दी समझ नहीं। जद एक एक करके दो दो करके सारे सवास साडे बीज जांदे ने, सवास बीतन दे उत्ते समझ आउंदी है कि सवासां दी कीमत की है। अज साडे सवास ध्यान दे के वेखिए साडे सारे दे सारे सवास बिन दे अंदर जा रहे ने। विरलिया गुरमुखां प्रेमियां नेमियां नूं छड के जो आप सतसंगी गुरु गोदा आनंद पा रहे हो, कुछ होर प्रेमी जना नूं छड के ध्यान दे के वेखो दिन दे अंदर किन्ने सवास लै ते ओ मेरे सवास खर्च होए पर किस अर्थ विच खर्च होए। नजर पैगा कुछ सवास काम दी बिन दे अंदर कूड़ेदान दे अंदर पै गए ने, कुछ सवास लट लट करदी हुई क्रोध दी ज्वाला दे अंदर सड़ के राख हो गए ने, कुछ सवास साडे लोभ दी बिन दे अंदर कुछ हंकार दे कूड़ेदान दे अंदर कुछ निंदा चुगली दे अंदर कुछ ईर्षा बखेली दे अंदर इस तरह ही सवास बहुते खर्च हुंदे हुए नजर आउंगे। कुछ सवास इस तरह दे भी नजर पैणगे जिन्हां सवासां दे नाल वाहिगुरु परमात्मा दा चिंतन कीता होवे, निरंकार दे नेड़े इन्हां सवासां दे जरिए होण दा यतन कीता होवे पर उह सवास बड़े थोड़े मिलणगे। मैं एक होर बेनती करदा चलां, पानी साडे कोल थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पानी है, पर जद पानी बहुत ज्यादा होवे ते पानी दी कदरो कीमत दी पहचान घट हुंदी है। किधरे बंदा घेरे विच आ जाए मारू थल दे अंदर घिर जाए चार छफेरे मीला तक किधरे पानी दी बूंद तक नजर ना आवे रेता ही रेता चुगिरदे दे अंदर और जुबान सुख के तालू दे नाल लगदी होवे रोम रोम दी आवाज होवे पानी चाहिदा है। पानी तो बगैर गला खुश्क होवे, पानी तो बगैर इस तरह ही नजर आ रहा होवे कि जिवें प्राण बिखर जाणगे, मौत आ जाएगी अगर पानी दियां दो कुट्टां ना मिलियां। तो उस समय दे अंदर पानी दे एक गलास दी कीमत समझ विच आउंदी है उस समय दे अंदर जद पानी ना होवे। पानी है, पानी दी कीमत समझ विच नहीं है। ते मैं तुहाडे सामने उदाहरण अर्ज कर रहा सां, सवास मौजूद ने सवासां दी कीमत समझ विच नहीं है। सवास मुक जाणगे फिर इन्हां दी कीमत समझ विच आएगी ये किन्ने कीमती सन। एक मरण वाला मनुख साडा कोई भी बुजुर्गवार होवे सज्जन मित्र होवे

मैं उदाहरण तुहाडे सामने अर्ज करनी चाहुंदा। एक मनुख बिलकुल अखीरले पलां दे उत्ते पहुंचे है, बिलकुल मौत सामने आण के खड़ी है, ते जो अपने सारे परिवार नूं तीआं पुत्रां नूं कुटुंब कबीले नूं सारिआं नूं इकट्ठिआं करे ते इकट्ठिआं करके एक पुकार उहनां दे सामने रखे, भई मैं तुहाडे वास्ते 100 साल दा लम्मा सफर जफर जालदा रहा, मैं तुहाडे वास्ते खूही जाल पा के धन कमाउंदा रहा, मैं तुहाडे लई 18-18 घंटे मेहनत करके कमा के तुहाडा लालन पालन करदा रहा, मैं तुहाडे कारोबार बनाए, मैं तुहाडे घर बार बनाए, पर अज मैं तुहानू सारिआं नूं कहिणा कि मैनू 1 पैर 2 पैर 4 पैर दा समां तुहाडे विच रहण लई होर चाहीदा है, ते मेरी मदद करो, मैनू 2-2 4-4 सवास दिओ, घड़ी पल दे सवास दिओ। ना देना किसे दे अख्तियार है ते ना लेना ही किसे दे अख्तियार है, अपनी ही पूंजी वरतों विच लियाउणी है, ना ते ना सवासा नूं कोई दे सकदा है ते ना साडे कोलों कोई ले ही सकदा है, जो तुहाडी जेब दे अंदर धन है उही तुहाडा है, ओनू तुसी खर्चना है, कढ के ओनू चंगे पासे खर्च लो, ओनू मंदे पासे खर्च लो, ए मर्जी तुहाडी, खुद ब खुद मुनसब बन के अपने जीवन का फैसला करया करो कि मैं सवासा दा तन बुरे मार्ग दे उते खर्च कर रहा या मैनू भले मार्ग दे उते खर्च कर रहा, यह समा टलना नहीं है। तो जद पता है समा टलना नहीं ते फिर समा आउण तो पहला पहला चलन की तैयारी करके रहो, ते चलन की तैयारी की करनी, ना भी तैयारी होगी चलना ते तां भी पैना ही, मौत ने ते नहीं पुछना तैयारी है जा नहीं, चलना पैना है। चलन दी तैयारी करके रहन दा मतलब है अपने मन नूं सवारन दा यतन करो, अपने सवासा नूं लेखे विच लाउण दा यतन करो, ए रोज रोज अपने मन दी डायरी नोट करो, मेरा मन किन्नी वार बुराइयां दे अंदर मस्त रहिंदा है ते किन्ना कु समा चंगियाइयां वाले पासे इहदा रुझान वधदा होया मैनूं नजर पैंदा है। अपने मन नूं आप सुर ताल दे अंदर तरतीब दे अंदर लियाउण दा यतन करो, जीवन प्यारिओ तुहाडा है ते जीवन नूं सवारना भी तुसी आप है, कोई इस तरह दा साधन नहीं है कि मेरे जीवन नूं कोई दूजा सवार दवे। हां एक गल वखरी है कि जद तुसी अपने आप नूं सवारन दा यतन करोगे ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी तुहाडी मदद करन वास्ते नाल खड़े तुहानू जरूर मिलणगे, पर तुसी यतन ते करो, तुसी एक कदम तुरो तां सही, गुरु ग्रंथ साहिब करोड़ां कदम अगों तुहानू लैण वास्ते तैयार मिलणगे, तुसी थोड़ा सुधार करन दा तहैया करो, पातशाह बहुत ही कृपा आप ही कर देणगे। और जद पढ़िए ना भाई साहब भाई गुरदास साहब जी दीआं वारां नूं ते भाई साहब ने उच्ची डंके दी चोट दे उते बचन फुरमा दिता है, कहन लगे चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। अगर परमात्मा वड्डा है तो फिर मनना पएगा परमात्मा दा कदम ही बड़ा वड्डा है, असी छोटे हां ते साडा कदम ही बड़ा छोटा है, तुसी छोटा जिहा एक कदम उस पासे नूं वधाउणा है, उस वड्डे मालक ने अपना बहुत वड्डा कदम तुहाडे वल नूं वधाउणा है, ते ओह वी एक नहीं ओह वी करोड़ां कदम। तुसी यतन करना है कि मैं अपने आप नूं सवारा, ते यतन करन दा विचार बनाउंदिआं ही तुहानूं नजर आएगा कि खुदाई किरपा तुहाडे उत्ते हुंदी किवें नजर पै रही है। आपां मन करके सोचदे नहीं आ, यतन करदे नहीं आ कि मैनूं अपना आपा तरतीब दे अंदर सुरताल दे अंदर कर लेना चाहिदा। तो कह रहे ने भगत फरीद साहब जी के साहे लिखे ना चलनी, साहे दा मतलब साह मुकरर होया चलन वाला दिन मौत वाला पल, ना चलनी उन्हें टलना नहीं है, उन्हें साडे पास आ ही जाना है, जिंदू को समझाए अपने आप नूं समझाउण दा मन नूं समझाउण दा यतन कर, कि मना जद मरना ही है ते फिर पाप अपराध धोखा धड़ी दूजियां दा हक मारना निंदा चुगली ईर्षा बखीली फिर सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, मेरे कोलों क्यों करवा रहे हैं, जद मरना ही पैना है और फिर लम्मा समय इत्थे रह भी नहीं सकना। एक बेनती मैं आप गुरमुख प्रेमियां दे सामने होर भी करदा चला, सानू
ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਚਾ ਬਣਦਾ ਰੀਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਭੁੱਲਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਅੰਕਲ ਵਾਂਗ, ਤਾਲੀਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਲੀਮ ਲਈ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣ ਦੀ ਰੀਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਹਾੜ ਜਲੇ ਜਿਉਂ ਲਾਕਰੀ, ਕੇਸ ਜਰੇ ਜਿਉਂ ਕਾਸ, ਇਹ ਜਗ ਜਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਇਓ ਕਬੀਰ ਉਦਾਸ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਡ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮਰਕਟ ਤੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾੜ ਜਰੇ ਜਿਉਂ ਲਾਕਰੀ, ਕੇਸ ਜਰੇ ਜਿਉਂ ਕਾਸ, ਕਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕੇਸ ਜਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਪਏ, ਇਹ ਜਗ ਜਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਜਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਲਣਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਲਣਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ। ਜਦ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਗ ਜਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਗਤ ਵਾਕੇ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੜਨ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਾਮ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੋ, ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਸ਼ ਬੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਪਸ਼ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਬੜੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਚਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਲਪਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਕੇ ਚੋਰੇ ਭਰਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂਵਾਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਦੂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਲਾੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਦੁੱਲਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਵਰ ਤੇ ਛੇੜੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਰਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਬਣ ਕੇ। ਵਰ ਮੈਨੇ ਲਾੜਾ, ਵਰ ਮੈਨੇ ਦੁੱਲਾ, ਵਰ ਮੈਨੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ, ਪਰਨਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕੇ। ਚੰਗ ਮੁਲਤਾਨ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰਨਾਏ ਜਾਣਾ, ਪਰਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣਾ। ਆਖਿਆ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ, ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਲਾੜਾ ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪਰਨਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦੂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
बच्चे दा जन्म होवे मां दे गर्भ विचो, बच्चा होया एक दिन दा, असी कहने बच्चा वड्डा हो गया एक दिन दा, हुण बच्चा होर वड्डा हो गया एक महीने दा, हुण बच्चा होर वड्डा होया एक साल दा, हुण बच्चा होर वड्डा होया 20 साल 30 साल 50 साल ते जेड़ा बजुर्ग ही हो जाए चलदा चलदा ओनू असी आम पंजाबी विच कह दिंदे साडे वडेरे ने, ये साडे वड्डे ने। वडेरे का मतलब ये साडे तो बहुत वड्डे ने, कह भी दिंदे वड्डे वडेरे ने। गुरमत का यह मनना है वह वड्डा नहीं पैरों पैर छोटा हो रहा है। भगत कबीर साहब जी का महावाक है, वह कहिंदे ने जननी जानत, जननी मैंने जन्म देने वाली मां, जननी ए गल जानदी है समझ रही है, जननी जानत सुत बड़ा होत है कि मेरा पुत्र दिन पर रात वड्डा हो रहा है। कबीर साहब कहिंदे ने इतना कू ना जाने कि दिन दिन अवध करता है, इहदी उम्र घट रही है। गिनी मिथी पूंजी तुहाडी जेब दे अंदर होवे, $100 तुहाडी जेब दे अंदर होवे, उहदे विचों रोज $1 कढ के वरती जाओ ते उह पूंजी वध रही है जां घट रही है। जद भगत फरीद साहब जी कह रहे ने कि साहे लिखे ना चलनी, गिने मिथे सवास तेरे कोल ने, साहा लिखया है दिन मुकरर है, ते फिर रोज रोज वो सवास घट रहे ने, दिन घट रहे ने जां दिन वध रहे ने, आप ही अंदाजा लो। इहदा मतलब असीं पैरों पैर मौत वल नूं वध के जा रहे हैं। तो यही गल अपने आप नूं समझाउण दा यतन करना है, तां ही भगत जी उचेचा जोर दे के कह रहे ने जिंदू को समझाए। कबीर साहब की रचना के द्वारा एक होर बचन बख्शिया होया मेरे सामने आंदा है। कबीर साहब जी कहिंदे ने दिन ते पहर, पहर ते करियां, आव कटै, आव मैंने उम्र कटे मैंने घट रही है, आव कटै तन छिजै, छिजै का मतलब कमजोर होना। कहन लगे तन पैरों पैर हर रोज छिजदा कमजोर हुंदा नजर पै रहा है, उमर घटदी नजर पै रही है, दिना सालां घड़ियां पैरां करके, आव कटै तन छिजै, काल हेरी फिरे बदक ज्यों, बदक मैंने शिकारी, काल शिकारी बन के ना तेरे सिर दे उत्ते मंडरा रहा, काल अहेरी फिरे बदक ज्यों, कहो कवन बिद कीजै, सो दिन आवन लागा, ओ दिन नेड़े नेड़े आ रहा है, सो दिन आवन लागा, मात पिता भाई सुत बनिता, कहो को है कांका। कहन लगे ओ दिन नेड़े नेड़े आ रहा है। जिस पल दे अंदर साडा जन्म होया ओ पल सानू याद है, मिंटा सकेंटा दा लेखा जोखा हर बच्चे दा अजकल तैयार हुंदा है, इन्ने वज के इन्ने मिंट दे उत्ते बच्चे दा जन्म होया। ओ पैर केड़ा सी पैर दा पता है, पैर तो बाद ओ दिन केड़ा सी दिन दा पता है, दिन तो बाद ओ महीना केड़ा सी महीने दा पता है, महीने तो बाद ओ साल केड़ा सी साल दा पता है, अखीरी चलदियां चलदियां ओ साल आउणा है जिस साल दे अंदर सानू इस खिड़ी गुलजार बहार नू छड के टहनी दे नालों टुटना पैना है, टहनी दे नालों झड़ना पैना है, रुखसत होना पैना है, वो साल आउणा है, क्योंकि जो बनिया है उन्हें एक दिन टुटना जरूर है, जिस दी शुरुआत है उसका अंत अवच होना है। अगर परमात्मा वास्ते ये लफज कह सकने हैं कि अंत विच नहीं, आउन जान दे चक्कर विच नहीं, ते वो केवल रब है परमात्मा है, बाकी सारे काल दे बंधन दे अंदर आपां बजे हैं, असीं आए हाँ जाना पैना है, बने हाँ टुटने पैना है, साड़ी शुरुआत ते साड़ा अंत होना है। चलदियां चलदियां जिंदगी दे मोड़ दे अंदर एक इस तरह का साल आना है जिहड़ा जिंदगी का अखीरला साल होना है, उस तो बाद नवा साल साढ़े जीवन विच नहीं आना, लोगों के जीवन विच आएगा, एक दे जीवन विच नहीं आना, उस साल की कहानी खत्म हो जानी, ते साल तो बाद फिर चलदियां चलदियां गल आ जानी है उस महीने दे उत्ते, जिस महीने दे अंदर चलना पैना है, फिर महीना भी जांदा लगना है, फिर आ जाना है वो दिन, फिर आ जाना है वो पैर, फिर आ जानी वो घड़ी, फिर आ जाना है वो पल, फिर वो छिण आ जाना है जिस छिण दे अंदर सानू इस दुनिया नू छड़ के ते चलना ही पैना है। राजी होवांगे ना होवांगे, पर यह गल 100% सच है कि सानू चलना ते अवच पैना है। भगत जी कहन लगे सो दिन आवन लागा,
मात पिता भाई सुत बनिता बनिता मैंने घर वाली सुत मैंने पुत्र कहो को है कांका वो दिन नेड़े नेड़े आ रहा है। तो खैर कहन लगे जिंद बहुटी मरन वर ले जासी परनाए। एक मैं होर बेनती आप संगत दे सन्मुख करदा चला बहुता लम्मा समा नहीं तुसी केवल एक मिनट दी साधना करो। मैं ए नहीं कह रहा कदे ने एक महीना एक साल केवल एक मिनट और इथे बैठे बैठे करके वेख लो जिथे जिथे भी तुहाडा मन इस वक्त दौड़ रहा है अपने मन नू इस केंद्र बिंदु दे उत्ते लिया के इकट्ठा करो कि मेरे कोल मौत ने एक दिन आना है ते मैनू मरना पैना है मैनू यह शरीर छड़ना पैना है। ये मन विच विचार करो कि मैनू मौत आनी है ते इस केंद्र बिंदु दे उत्ते अपना ध्यान टकाओ केवल एक मिनट ले ते फिर वो एक मिनट का समा नोट करके वेखियो तुहाडे मन दे अंदर ना कोई दुई ना कोई द्वैत ना कोई निंदा ना कोई चुगली ना कोई ईर्ष्या ना कोई मैल कुछ भी नजर नहीं आएगा। वो एक मिनट जो मौत नू चेते कर रहे हो गहराई विच जाके तुहाडे मन दे अंदर बड़ी पवित्रता दी लहर बनदी हुई नजर पैगी। जद अंदरों प्राणा तो सोचोगे ना मरना पैना है अंदर कंब जाएगा जे मरना ही पैना है ते फिर मैं अपना समा बर्बाद क्यों कर रहा फिर मैं तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी शरण विच जाके ते जन्म नू सफल करन दा यतन करा अपने आप नू सवारन दा यतन करा। क्यों मैं कूड़े करकट दे ढेर बन बन के अपने सिर दे उत्ते पंडा रखी जा रहा फिर मन इत्थे टिकेगा। कहन लगे जिंद बूटी मरन वर ले जासी परनाए अपन हाथी जोड़ के जोड़ मैंने तोरना अपने हाथां दे नाल तेनू तोरना पैना हाथां दे नाल बच्चियां नू जन्म देने हाथां दे नाल बजुर्गवारां नू तोरना पैंदा। इन्हां हाथां दे अंदर कईयां दा जन्म होया कईयां नू खड़ाया लाड़ प्यार दिता कुछड़ गोदी चुकदे रहे ते इन्हां हाथां दे नाल कईयां दा मरदे वकत इशनान पान करवाया कईयां दी अर्थी नू मोटा दिता कईयां दे चिखा नू लांबू लाए इन्हां हत्थां दे नाल। खिमा मंग लवां और एक बेनती भी करदा चला भगत फरीद साहब जी दे सलोकां दे अंदर तकरीबन बहुता ख्याल मौत दा हुंदा है और जिन्हों मौत चेते विच आ जाए ना उन्हों परमात्मा भी चेते विच अवश्य आ जांदा है। मैं किधरे कथा कर रहा सा सरी दे अंदर सरी दे अंदर एक स्टेज है दशमेश दरबार एक गुरुद्वारा साहिब है दशमेश दरबार संगत बहुत हुंदी है सरी दी सब तो वड्डी स्टेज ओही है। सूही राग दे अंदर कथा चल रही सी लड़ीवार ते कथा चल रही सी भगतां दी बाणी दी ते हुण ओ भगतां दी बाणी दे अंदर हर शब्द दे अंदर ही मौत दा जिक्र आउंदा है हर शब्द दे अंदर ही मौत दा जिक्र। जद तीन क दिन मैनू बीत गए तकरीबन नौ दस शब्द ने जिन्हां दे अंदर लड़ीवार मौत दा ही सिलसिला है मौत दा ही जिक्र है। जद तीन क दिन बीत गए ते मैं कथा कर रहा सा दोपहर दे वक्त संगत काफी हुंदी है एक प्रेमी आण के मेरे सामने ना पर्ची लिख के रख गया ते पर्ची ते लिखिया ज्ञानी जी घरों आईदा है शांति लैण वास्ते तुसी तीन दिन हो गए ने साडे कन्नां दे अंदर मरना पैना है मौत आउणी है सानू डरा धमका के घर नूं भेज दिंदे हो इहदा नां कथा है। मैं कहा सज्जना तू सही ढंग दे नाल कथा सुनी नहीं है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पढ़ एक एक पंक्ति विचों सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी याद करवा रहे ने परमात्मा नूं और बहुत शब्दां दे अंदर याद करवा रहे ने मौत नूं एक शब्द नहीं अनेकां शब्द सैकड़े शब्द ने जो तैनू तेरा अंतला पल चेते करवा रहे ने। इन्ना खौफ क्यों इन्ना डर क्यों कथा ध्यान दे नाल सुनो उन्हों अपने अंदर जान दो विचारो कि यह जो गल सुनी जा रही है ये अंदर कोई सच भी है जा सारी झूठ बयानी है। खैर अपने विषय दे नाल जुड़ो भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने कि अपना हथी जोड़ के कह गल लगे ताए अपने हथां दे नाल तोरना पैगा कह गल किहदे गल ताए मैंने अगां वध के गलवकड़ी विच लै के रोएगा अपने हथां दे नाल अपने आप नूं तोर के। बड़े साडे हथां दे अंदर जन्मे ने बड़े चले जाने ने रोज कोई ना कोई आउंदा नजर आ रहा है कोई ना कोई जांदा नजर आ रहा है। महात्मा बुद्ध दे पास एक वारी ना एक माता आई
ਤੇ ਮਾਤਾ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਜਾਹਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਾਹਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ। ਮਹਾਤਮਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਮਾਤਾ ਕੀ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੰਤਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਕਲੌਤੀ ਸੰਤਾਨ, ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲਦਾ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੜਾ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਸਮਝੇ ਨਾ। ਆਖਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਹਿਕ ਪਈ। ਆਖਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਹ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਬਾਦੀ, ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ, ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਮੂਹੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਦੀ ਜਾ, ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲਿਆਏਂਗੇ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ? ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਉਸ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦਾਣੇ ਪਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦਾਣੇ ਕਿਉਂ, ਮਣਾ ਮੁਈ ਕਣਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਮਾਤਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਆਖਿਆ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈਣ ਚਲੀ ਗਈ, ਭਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਈ, ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਡਿੱਗਦੇ ਡੋਲਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੰਮੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਰਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਜਾ ਭਾਵੇ ਲੈ ਖਸ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਤਾਏ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 5-7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਲਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਟਹਿਕਦਾ, ਮਹਿਕਦਾ, ਹੱਸਦਾ, ਨੱਚਦਾ ਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਹਾਰ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ, ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ
ਇਹ ਜਵਾਨ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਆਪ ਹੈ, ਖਰਚਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏ। ਦੋ ਚਾਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਵਾਨ ਬਲਵਾਨ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਲਹੀਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਦਮ ਆ ਜਾਣ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਲਹੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੌਤ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਾ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਰ ਲੋਕ ਰਾਮ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਦੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਢਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੱਤ ਸੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ ਕਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਅਸਰਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ, ਕਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਆਇਓ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਸ਼ਾ ਗਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਮਰ ਢਲ ਗਈ ਏ, ਨੌਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਕੁਟੰਬ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਈਰਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਤੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਗਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਂਗ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਮਦੀਹ, ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਏਕ ਮਦੀਹ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਤ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਤਰੁਣ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੀਜਾ ਧਨ, ਤੀਸਰਾ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਚੌਥਾ ਧਾਮ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਬਹਾਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਦੀਬ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ, ਬਚੇ ਬਚਾਵੇ ਰਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਜਾਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਹੀ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਬਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੜ ਖੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਦੇ ਦੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਨ ਹੋਇਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿਸੇ। ਪਰ ਜੇ ਜਵਾਨ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਿਗਾਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖੇ,
गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नूं पढ़ो। सतगुरु कहिंदे ने दे लम्मी नदर निहाली है, पढ़दे हो ना सुनदे हो सो रोज रोज श्री आसा जी दी वार, दे लम्मी नदर निहाली है। लम्मी नजर सुट के वेख अगे आउण वाला समा किवें दा रहा है, जो तू कर्म कर रहा है दा तेनू फल की मिलना है। लम्मी नजर करेगा ता ही ध्यान विच आएगा ना। हुण एक जवान वेखे अगे की आ रहा है, ते जवान नूं दिसदा है इस तरह का बुढ़ापा। ते हुण फिर मैं बुढ़ापे कोलों खिमा मंग लवां, जे बुढ़ापा वेखे भी अगे की आ रहा है। पहली गल ते ना बालपन विच इस गल दा ध्यान आउंदा है, ना जवानी विच आउंदा है, ते ना बुढ़ापे विच आउंदा है। चलो जे बुढ़ापे दे अंदर बंदा पहुंच गया, ते बुढ़ापे दे अंदर वेखे कि हुण अगे आउण वाला समा किस तरह दा आ रहा है, ते उहनूं मौत राणी अपने गल विच ढोल पा के वजाउंदी हुई घर वल नूं दौड़दी हुई नजर पैगी, अपने घर वल नूं आउंदी नजर पैगी। मौत आ रही है, पल पल नेड़े आ रही है, पर ना मौत बुढ़ापे विच एते, ना मौत जवानी विच एते। तुसी बड़भागी हो जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे चरणां दे अंदर हाजरी लवाउण लई आ जांदे हो, किसी कारण करके ते आई ना गुरु ग्रंथ साहिब जी दी विचार सुनण लई, सतगुरु जी दी बाणी दा कीर्तन सुनण लई, किसी मकसद नूं लैके ही अक्सर आउंदे हो ना। ठंड विचों निकल के घरां तों उठ के आउंदे हो, किसी मकसद की प्राप्ति लई आउंदे हो ना। तो खैर मैं अर्ज कर रहा सां, भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने कि अपन हथी जोड़ कै कै गल लगे ताए। अगर एक बा कमाल बचन भगत फरीद साहब जी ने फिर कह दिता, कहन लगे वालों निक्की पुरसलात। इस्लामी शरा दे मुताबक एक पुल दा नां सिरात, इस्लामी शरा मनदी के एक पुल है सिरात नां दा पुल, और वो वाल तो बरीक पुल है, उदे थले अग बल रही। इस्लामी शरा दी गल कर रहा मैं, गुरमत दी गल नहीं, मन किधरे शंके विच ना चला जाए। इस्लामी लोग कहिंदे ने उस पुल जिहड़ा पुल वाल तो भी बरीक है, उदे उत्तों दी चल के निकलना पैना है, चार चुफेरे अग बल रही है, जिहड़े पवित्र मना वाले ने उह निकल जांदे ने, पापी उहदे विच डिग के ते नष्ट हो जांदे ने। इहनूं इस तरह कहिंदे ने इस्लामी शरा वाले। इहनूं यहूदी ते पारसी उन्होंने एक नां दिता है चिनमत पेरेतू। मैं फिर दोबारा यह लफज दोहरा रहा, उन्होंने भी एक पुल मन्या है, ते पुल का नां रखते हैं चिनमत पेरेतू। वो कहिंदे ने चिनमत पेरेतू नां दे पुल तो पवित्र मना वाले निकल जाते हैं, ते बाकी नरक की अग्नि के अंदर नष्ट हो जाते हैं, उन्होंने भी इस तरह मन्या है। हुण मैं गल करा गुरमत की, गुरमत के संबंध में की कहती है। भगत कबीर साहब जी के बचन पढ़ो, भगत कबीर साहब जी कहते हैं कबीर मुकत दुबारा संकुरा। संकुरा का मतलब है बड़ा तंग। तो पुछया भगत जी किन्ना कु संकुरा है, किन्ना कु तंग है। कह लगे राई दसें पाए, सरों के दाने तो दसवां हिस्सा। सरों की दो तरह की, एक आम ते एक राई सरों। ते राई सरों का दाना ना थोड़ा जिहा दूजी नालों मोटा हुंदा है। राई सरों अचार दे अंदर अक्सर काम आउंदी है, चटनी बनाउण दे अंदर अक्सर काम आउंदी। आखिया राई दसें पाए, ये जिहड़ा राई का दाना सरों का दाना इहदा भी दसवां हिस्सा। गुरमत इस तरह कहती हुण इन्ना छोटा दरवाजा। कबीर साहब कह रहे ने मुकत दुबारा संकुरा राई दसें पाए, मन तो मैगल हुए रहो निकसो क्यों कह जाए। मन तेरा मैगल, मन तेरा हाथी, दरवाजा बड़ा छोटा, उहदे विचों निकलेगा किवें। अगले श्लोक विच भगत कबीर साहब जी ने जवाब भी बख्शिया, मेहरबानी कीती, जवाब भी दिता, हल भी दिता। जे बीमारी बयान कीती है ते नाल इलाज भी बयान कीता है, नुस्खा भी बयान कीता है, गल नूं छड्डिया नहीं। कहन लगे ऐसा सतगुर जे मिले तुठा करे पसाओ। जे तेनू जीवन चलदे दे अंदर किधरे मुकम्मल मुरशद मिल जान, पूरे सतगुरु मिल जान, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी वर्गे महान गुरु मिल जान, ऐसा सतगुर जे मिले तुठा ते गुरु तेरे ते पवे त्रुठ करे पसाओ। पसाओ मैंने प्रसाद, ओ त्रुट के तेरी झोली दे अंदर अपने गुणा दा प्रसाद बख्श दे। पसाओ दा मतलब हुंदा है कृपा, पसाओ दा मतलब मेहरबानी, पसाओ दा मतलब प्रसाद। आखिया तुठा करे पसाओ,
मुकत दोबारा मोकला सहजे आवो जाओ। मोकला मैंने खुला, कहने लगे मुक्ति का दरवाजा मोकला हो जाएगा तेरे लिए। ते फिर बड़े आराम दे नाल सहज विच टेक के आ ते जा सकता है। कहने लगे मुकत दोबारा मोकरा, हुण एक बेनती होर सुन लियो, वो मुक्ति का दोबारा उन्ना ही रहना है, उन्हें खुला नहीं होना, मोकला नहीं होना। होना की जेड़ा तेरा मन सी ना मैगल वर्गा, उन्हें चिंटी तो छोटा बन जाना। हंकारी मन हाथी दे तुल है ते निर्माण मन कीड़ी दे तुल है। निर्माणता नू पानी दे नाल गिनिया ते मिनिया गया, निर्माणता नू पानी दा चिन्ह भी मन्या गया, पानी नू निम्रता दा चिन्ह मन्या गया। ते पानी बरीक तो बरीक दरवाजे विचों में निकल जाता है, पर पत्थर ते नहीं ना निकलता। हंकारी हाथी वर्गा बन के वो निकलेगा नहीं, ते जे गुरु कृपा नू पालेगा तू बन जाएगा निर्माण, तू बन जाएगा बिलकुल दुरुस्त निकलन दे योग, फिर तेरे वास्ते वो मुक्ति का दरवाजा खुला ही बन जाएगा। तेनू नजर आएगा मेरे वास्ते दरवाजा रुकावट नहीं है। हुण धन गुरु नानक साहब जी ने मारू राग दे अंदर एक बचन कह, कहन लगे खंडे तार गली अत पीड़ी लेखा लीजे तिल ज्यों पीड़ी। इहदा मतलब कोई इस तरह का रस्ता, ते ओ रस्ता की है, कोई स्पेस दे अंदर इस तरह का मुक्ति का दरवाजा है, किसी जगह ते खास बनिया मुक्ति का इस तरह का राह है। इस समाज दे अंदर ही अपने आप नूं बिल्कुल निर्माण करना, उस राह विच्चों निकलिया जाना है। ते जे कोई बुराई कोई अवगन कोई गुनाह अपने नाल लेके चलोगे ते फिर उस दवार विच्चों रुकावट बन जाएगी। मुक्ति दा राह यही है, होर कोई राह नहीं है। अगर जिंदे जी मुक्त होना चाहते हो ते फिर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पाक पवित्र बाणी नूं समझो, बाणी के अनुसार जीवन गुजारना शुरू करो, फिर तुहानू समझ आ जाएगी कि रस्ते दियां रुकावटां की ने, ते मैं जिउंदे जी मौत आउण तो पहला पहला मुक्त होना किवें। अगा भगत जी कहिंदे ने वालों निक्की पुरस लात कन्नी ना सुनी आए। ये गल तू कन्ना दे नाल सुनदा नहीं, भगत जी कहिंदे ने कन्नी ना सुनी आए। फरीदा कीड़ी, कीड़ी का मतलब है आवाज, इनू कीड़ी नहीं पढ़ना, कीड़ी सिहारी ये कक्के दे नाल बियारी नहीं। कहन लगे फरीदा किड़ी पवंदई आवाजा पै रही ने, किड़ी पवंदई खड़ा ना आप मुहाए। जिथे खलो के तू ठगे जाना है ना लुटे जाना है, उथो सतगुरु तेनू आवाजा दे रहे ने भी इस दरवाजे विच ना जा, ए गुना ना कर, ए कम ना कर, इस तरह का जीवन ना अपने पास रख, मुहाए ठगया जाएगा। ये आवाजा दे रहे ने, ते दे कौन रहे ने, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह। गुरु ग्रंथ साहिब ही आवाजा दे रहे ने कि जाग रे मन जागण हारे, गुरु ग्रंथ साहिब ही आवाज दे रहे ने कि जाग ले हो रे मना जाग ले हो, कहां गाफल सोया जो तन उपजिया संग ही सोपी संग ना होवा। गुरु ही आवाजा दे रहे ना, पर कहन लगे तू गुरु की आवाज नू सुनदा ही नहीं। फरीदा किड़ी पवंदे आवाजा ते पै रही ने, खड़ा ना आप मुहाए। कहन लगे तू फिर भी उथे खलोता है, आवाज सुन भी रहा है पर खड़ा उथे ही है, जगह बदलता नहीं, नतीजा ए होना है कि लुटिया जाएगा ठगिया जाएगा। तो ऐसी भगत हे प्राण नाथ गोविंद कृपा निदान जगद गुरु, संसार ताप हरन करुणा मैं सब दुख हरू, हे शरण जोग दयाल है

खरीद दर दरवेशी कखड़ी चलना दुनिया पत बन उठाई पोटली किथे वंजा कत फरीदा दर दरवेशी गखड़ी चलना दुनिया पत

किजना बूझ है किजना सूझ, दुनिया गुजी पाहे। साईं मेरा चंगा कीता, नहीं ता हम भी दजा आहे। साईं मेरा चंगा कीता, नहीं ता हम भी दजा आहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो, आप सरवण कर रहे सी भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों, उन्हां दे मुबारक हिरदे विचों उठे हुए वलवले और उन्हां दी मुबारक रसना दे कहे हुए बचन। भगत फरीद साहब जी दी बाणी नूं बहुत ध्यान दे के पढ़िए विचारीए ते भगत फरीद साहब जी ने अपनी रसना दे नाल जो बचन कहे, उन्हां बचना दे अंदर दुनिया दे बहुत सारे विषयां नूं छोहण दा यतन कीता। कदी किसे सलोक दे अंदर मौत दा जिक्र, किसे सलोक दे अंदर जीवन दा जिक्र, किसे सलोक दे अंदर गुनाहां दा जिक्र, किसे सलोक दे अंदर गुणां दी गल, किसे सलोक दे अंदर पखंडवाद दी चर्चा, किसे सलोक दे अंदर परमात्मा हृदय दे अंदर है इस गल दी चर्चा। भगत फरीद साहब जी ने बहुपक्खी जीवन नूं बहुपक्खां दे नाल वेख के सुधारन दा यतन कीता है। जिस भी पक्ष तों भगत जी नूं कोई कमी पेशी आम दुनिया दे जीवन दे अंदर नजर आई, रड़कदी दिसी, उसे ही एंगल तों तमाम भगतां ने अपनी अपनी बाणी दे जरिए, गुरु साहिबाना ने अपनी बाणी दे जरिए मनुखता दी झोली दे अंदर उच्चा ते सुचा ज्ञान पा के मनुखता नूं नवाजिया। अज दे इस महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी दा उपदेश कहन लगे, फरीदा दर दर वेशी गाखड़ी। दरवेश दा अखरी अर्थ हुंदा है रब दे दर दे उत्ते खड़ा हो के मंग करन वाला रब दा मंगता, रब दा जाचक। दरवेश दा अखरी अर्थ ए हुंदा है। पर आम किसे दूसरे दरवाजे ते नहीं, किसे बादशाह दे दरवाजे ते नहीं, जो परमात्मा दे दर ते खड़ा होवे और मंग भी करे केवल इको ही, परमात्मा तेरे मिलाप दी चाहना है, होर कोई चाहना बाकी नहीं बचे, उन्हों कह देंदे ने दरवेश। दर दर वेशी गाखड़ी चलना दुनिया पत। कह लगे आम मनुखता दे अंदर विचरदिया होया नजर मैनू ए आया कि मनुखा दे नाम दे नाल लफज ते दरवेश जुड़िया या दरवेश लफज जोड़िया गया, पर उन्हां दी तरजे जिंदगी नूं वेखो, जीवन दी चाल नूं वेखो ते ओ आम दुनियादारां वाली चाल उन्हां दे जीवन विचों नजर पैंदी है। इत्थे मैं एक दो बेनतियां आप संगत दे सन्मुख करदा चलां। अगर गुरु साहिबाना नूं भगत जना नूं आपां बाहरों वेखीए ते बाहरों वाकई दुनिया वर्गी चाल है, कोई फर्क नहीं है, और भगत दी चाल एक दरवेश दी चाल बाहरों रहनी भी आम दुनिया वर्गी चाहीदी है। पर अगर अंदरों वेखो ते अंदरों नरोल खुदा दे नाल मिले हुए खुदा वर्गे नजर पैंदे ने। अगर अंदरों वेखो बाहरी तौर दे उत्ते गुरु साहिबाना तो मैं गल प्रारंभ करां, बाहरी तौर दे उत्ते वेखो असी भी गृहस्थी ते साडे दसे दे दसे गुरु साहिबान गृहस्थी। अगर गृहस्थ मार्ग नूं अख्तियार नहीं कीता ते उमर दे तकाजे दे नाल धन श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज जी ने गृहस्थ मार्ग नूं प्रवान नहीं कीता,
इस तरह नहीं कि उन्होंने हृदय विचों प्रवान नहीं किया, उम्र के लिहाजे दे नाल उस मार्ग नूं अपना ना सके। तकरीबन पौने 8 साल की उम्र के अंदर ते ज्योति जोत समा जांदे ने 8वें हजूर गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज। और फिर मैं एक होर भी बेनती करा, तकरीबन 22 साल का लम्मा समा 4 उदासियां दे अंदर 4 फेरियां दे अंदर तकरीबन 22 साल का लम्मा समा धन श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी घरों बहर भी रहिंदे ने और आए भी जगत जलंदे नूं ठारन वास्ते ने। ते फिर ए भी कोई नहीं कह सकता कि धन श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे मुबारक पवित्र हिरदे दे अंदर कोई मैल दा अंश बाकी सी। मैल उन्हां दे नेड़े तेड़े नहीं है, वासना उन्हां दे हृदय विच बाकी बची नहीं है, कोई आश कोई तरंग कोई उम्मीद उस पवित्र हिरदे दे अंदर नहीं है। उन्हां दे कोल इस मार्ग नूं अपनाउण वास्ते समां भी नहीं। मैं अज जिहड़ियां बेनतियां करनियां ने जां गुर इतिहास विचों ते जां गुरबाणी नूं आधार बना के मैं अपने कोलों कुछ भी कहण दा यतन नहीं करना, क्योंकि विशा ही बड़ा पेचीदा विशा है। तो खैर, गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे कोल समा ना हुंदिया होया वी फिर भी उन्होंने इस मार्ग नूं अख्तियार कीता, मार्ग नूं अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि आउण वाले कल नूं जो लोग मेरे मगर मगर चलदे आ रहे ने उन्हां नूं इह कहण दा समा ना मिले कि ग्रिस्त मार्ग माड़ा हुंदा है, ग्रिस्त मार्ग बुरा हुंदा है, उन्हां नूं इह कहण दा समा मिले ना। क्योंकि अक्सर असीं चलने अपने वड्डियां वडेरियां दे चिहन कदमां नूं वेखदे होए, अक्सर आपां चलने आ जिहड़े वड्डियां वडेरियां ने पूरने पाए ने, गुरु साहिबाना ने पैगंबर जना ने जिथे कदम टकाए ने उन्हां कदमां दे चिन्ह वेखदे होए, मेरा मतलब उन्हां गल्लां बातां नूं मनदे होए, उन्हां नुक्तियां सिद्धांतां नूं अपनाउंदे होए अक्सर मनुख चलदे ने। अगर कोई हिंदूइज्म दे अंदर चल रहा है तो श्री राम ते श्री कृष्ण जी दी गल करके चल रहा है। अगर कोई बुद्ध धर्म दे अंदर चल रहा है तो वह गल करदा है पहला महात्मा बुद्ध दी, महात्मा बुद्ध इस तरह चलदे रहे, महात्मा बुद्ध इस तरह करदे रहे, फिर वह जीवन की चाल चलनी शुरू कर देता है। अगर कोई जैन मत दा धारनी बन के चल रहा है वो यही एग्जाम्पल देंदा है कि साडे महावीर जैन तकरीबन अज तो 2500 साल पहला कहन लगे वो आए ते उन्होंने इस तरह दुनिया दे अंदर मृत मंडल दे अंदर आके लोकां नूं उपदेश दिता, इस मार्ग दे पांधी बन के चले ते जैनी कहिंदे ने असीं तां चल रहे। हुण कोई सिख नूं पुछे भी तुसीं किस मार्ग ते चलना चाहोगे ते सिख दे कोल यही जवाब होएगा ना कि असीं गुरु नानक साहिब जी दे बनाए मार्ग ते चलांगे, होर ते कोई जवाब नहीं है ना कि गुरु नानक साहब जिस मार्ग ते चले असीं उस मार्ग ते चलांगे। फिर गुरु नानक पातशाह महाराज जी ग्रिस्त दे मार्ग दे अंदर भी चले ने। ग्रिस्त दे मार्ग तो उपराम होना गुरमत दा असूल भी नहीं ते गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दा बख्शिया सिद्धांत भी नहीं। अगर कोई ग्रिस्त मार्ग नूं छड्ड के चलन दा यतन कर रहा है मैं ही कहांगा वो पहले कदम दे उत्ते भटकदा होया नजर पै रहा है, पहले कदम दे उत्ते थिड़क गया है। क्योंकि गुरु साहिबाना ने जद ये मार्ग अपनाया है असी इस मार्ग नूं नफरत करनी, असी इस मार्ग नूं माड़ा कह के इस मार्ग नूं छड्ड देना ते एक दूसरा मार्ग अपना के अपने आप नूं ज्यादा पवित्र जान लेना, दूजियां नालों महान ते अगे मन लेना, ये साड़ी अपनी अग्ञानता या साड़ी अपनी भुल है। गुरु पातशाह ग्रिस्त मार्ग दे अंदर रह, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ग्रिस्त मार्ग दे अंदर रह, दसे गुरु साहिबान ग्रिस्त मार्ग दे अंदर रह, जिन्हें आप भगतां दी बाणी ए ग्रिस्ती होए ने, बाबा फरीद साहब जिन्हां दे सलोकां दी व्याख्या मैं लड़ीवार तुहाडी अरज कर रहा, बाबा फरीद साहब जी दे भी 6 लड़के ने ते 2 लड़कियां ने, 8 संतानां नूं जन्म दिता है भगत फरीद साहब जी ने, जिन्हां दी बाणी आप प्यार सहित रोज रोज सरवण कर रहे हो। फिर गुरु नानक साहब जी ने सानू ग्रिस्त मार्ग दा साधु बनाया, ग्रिस्त तों त्यागी होके साधु बनण दा उपदेश नहीं दिता, उन्हां आख्या ग्रिस्त दे विच रह के साधु बन, मैं इस मार्ग नूं जन्म दे रहा। तो खैर, अगर बाहरों वेखीए गुरु साहिबाना नूं ते बाहरों उन्हां दे घर दे अंदर सुपत्नी, उन्हां दे घर दे अंदर तियां दा जन्म, उन्हां दे घर दे अंदर पुत्रां दा जन्म,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਵਧੀਕ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਵਧੀਕ, ਮਾਇਆ ਵੱਧ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਟੰਬ ਕਬੀਲਾ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਬੀਨੀ, ਬਰੀਕ ਨਿਗਾਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਨਰੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਮਾਇਆਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਹਰ ਅੰਦਰ ਮਾਇਲੇ ਫਰਜੰਦ ਜਨ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਰਜੰਦ, ਫਰਜੰਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਨ ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਜਨ ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ, ਤੇ ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਨਾ ਲਾਓ ਇਕੱਲਾ ਪੜੀਏ ਜਨ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਥੇ ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੇਵਕ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ, ਇੱਥੇ ਜਨ ਤੇ ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰਤ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਅੰਦਰ ਮਾਇਲੇ ਫਰਜੰਦ ਜਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਜੰਦ ਨੇ, ਫਰਜੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਬਾ ਖੁਦਾਏ ਖੇਸ ਤਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਕੀਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕੀ? ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕੁਟੰਬ ਹੈ, ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਧਨ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਬਾ ਖੁਦਾਏ ਖੇਸ ਤਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ ਸਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਰੋਲ ਖੁਦਾ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ। ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਬਾ ਖੁਦਾਏ ਖੇਸ ਤਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਅਗਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਖੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਾਖੜੀ, ਗਾਖੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਖੇਡ ਹੈ, ਆਮ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਉਨੀ ਮਹਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਦਾਰਥ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਤੁੱਛ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਾਧਨਾ, ਆਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਥੋੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਮ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ, ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ

शरण ठाकुर तब तुमरी, तिस राखो हो कृपा तार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मुरार। वाहे गुरु साहिब जीओ, किजना बुझे किजना सूझे,

0: दुख राह दे अंदर बनेगा ही नहीं। ते जे प्रबंध नूं तोड़ो भई लाइट ग्रीन है या रेड है ते मैं रुकना नहीं, मैं 100 दी स्पीड ते जाना ही जाना है। एक चौंक एक राउंड अबाउट भी पार नहीं कर सकोगे, दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे, एक्सीडेंट दी लपेट विच आ जाओगे। क्यों आ जाओगे? क्योंकि प्रबंध नूं तोड़िया है। अगर स्पीड 100 दी जगह ते 200 ते जा रहे हो ते तुहानूं कोई चलन नहीं देगा, नाल दी नाल रोक लैणगे क्योंकि प्रबंध नूं तोड़िया है। कुछ प्रबंध राजनीति ने बनाए ने, उन्हां नूं असीं चाहुंदे होए ना चाहुंदे होए भी कबूल करने आ। कुछ प्रबंध साडे मन दी सफाई लई, मन दी सुगड़ता लई, मन दी शांति लई, मन नूं तरतीब करन दे लई कुछ प्रबंध घड़े ने, तैयार कीते ने गुरु साहिबानां ने। ते जिहड़े प्रबंध गुरु साहिबानां ने बनाए ने उन्हां प्रबंधां नूं असीं तोड़ के उलंघन दा यतन करदे आ। ते प्रबंध कोई भी तोड़ोगे प्यारियो बेचैनी बनेगी, चैन दा जन्म नहीं होएगा। भगत फरीद साहब जी कहन लगे, साईं मेरा चंगा कीता। हे साईं जी, कीता है तू चंगा, पर करिए कि तेरे चंगे कीते नूं सारे चंगा मन दे ते नहीं ना। जे तेरे सारे चंगे कीते नूं चंगा मन लैन फिर ते शांति शांति घरां विच बन जाए। तू भावे लख सर्ब गुण संपन्न है, सर्व कला समर्थ है, पर लोकां नूं तागियां दे उत्ते, तवीतां दे उत्ते, टूणियां दे उत्ते, टंजरां दे उत्ते, देहधारियां दे उत्ते, पखंडियां दे उत्ते जिन्ना भरोसा है, हे प्रबंध करन वाले गुरु ग्रंथ साहिब जी, तेरे उत्ते इन्ना भरोसा नहीं है। ते जिन्ना भरोसा तेरे ते कोई रखेगा, उन्ना ही भगत फरीद साहब जी वांगू बलदी हुई अग तों बुझ जाएगा। बलदी हुई अग नूं उह बंद कर लेगा, उहदे अंदर शांति सहज बन जाएगा। कहन लगे, नहीं तां हम भी दज्जा आहे, नहीं ते मैं भी सड़ बल जाना सी आम लोकां वांग, जे साईं जी दे चंगे कीते प्रबंध नूं मनदा ना। प्रबंध नूं कबूल करो, इहदे अंदर ही साडा सारिआं दा भला है। जो रस्ता सतगुरु सानूं बाणी विचों विखाउण, उस रस्ते नूं अपना लो, उस रस्ते ते चल पो और चल के वेखो कि मन शांत हुंदा है जां नहीं हुंदा। मैं एक बेनती कह के खिमा दा जाचक होवांगा, जब कोई रस्ते नूं अख्तियार करे ना, रस्ते दे उत्ते चले ना, ते दूर खलो के कही जावे जी इस राह दे उत्ते चलन तो बाद ते कुछ नहीं मिलना, ए ते उहदी अज्ञानता है ना, ए ते उहदा बोलना नरोल झूठ ही बोलना है ना। तुसी कोई 2-4-6 महीने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अनुसार जीवन बतीत करके वेखो, पर गुरु दे अनुसार अपनी मर्जी दे नाल ने, ते फिर आण के गल करियो कि कुछ मन दे अंदर शांति बनदी है जां नहीं बनदी। चलना है अपनी मर्जी दे नाल, डॉक्टर दी दित्ती दवाई भी खाई जानी है। ते डॉक्टर ने कहना है कि आलू चावल नहीं खाने, जिन्ने दिन दवाई खा रहा है रोग नहीं जांदा उन्ने दिन तेरे लिए परहेज है, ना तू आलू ते ना तू चावल खाने, चौल भी नहीं खाने, आलू भी नहीं खाने। उधरों दवाई खाई जावे तो उधरों तिन्ने टाइम ही आलू तिन्ने टाइम ही चौल खाई जाए तो फिर बीमारी तो बचेगा किवें? जिन्ना जरूरी इलाज करना है उन्नी जरूरी नाल परहेज रखना है। तो साईं जी ने जेड़ा साडे भले लई प्रबंध कीता है, इस प्रबंध नूं कबूल करन करके मन दे अंदर शांति बनेगी, वरना नहीं। भगत फरीद साहब जी दे सलोक नूं आधार बना के कुछ बेनतियां मैं आप संगत दे सामुख रखन दा नमाना यतन कीता। सतगुरु जी रहम करन, समूह मना दे अंदर गुरमत ज्ञान दी बख्शिश करन, अज्ञानता दा हनेरा दूर करन, तमाम हुईयां भुल्लां खामियां लई दास खिमां दा जाचक है।
1: हे प्राण नाथ गोबिंद कृपा निदान जगत गुरु, हे संसार ताप हरण

समय सिमरन तनानक राम दमोदर माधुवे जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुम्हारी तिस राखु हो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो हो लाज मुरार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो हो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जीयो खरीदा जे जाना तिल थोड़े सम्मल बुक परी जे जाना शहो नंडड़ा तां थोड़ा मान करें

0: सारी दुनिया घूम फिर के वेख ली, तेरे वर्गा ना ते कोई दयालु मिलिया ते ना कृपालू मिलिया, ना तेरे वर्गा कोई मददगार मिलिया, ना तेरे वर्गा कोई रक्षक मिलिया, ना तेरे वर्गा कोई रिजक दाता मिलिया, रोजी दहिंद मिलिया, तेरे वर्गा कोई सज्जन नहीं मिलिया। सब जग डठा हंड, भगत जी कहिंदे ने गली सो सज्जन भी एक टुंडेंदी ना लहां तुखां ज्यों मली। गली बाती हौसला देन वाले मलम पट्टी करन वाले भी सज्जन मिलदे ने, पर उस रोह नूं मिटाउण वाला दर्द तों राहत देन वाला ते भगत जी कहिंदे ने कोई बिरला बिरला ही मिलदा है ना। कबीर साहब भी कहिंदे ने कबीर सब जग हों फिरियो, मंदल मंदल मैंने कंधा मोढा, मंदल कंध चढ़ाए कंध मैंने कंधा, मंदल मैंने ढोल कह लगे मैं ढोल अपने कंधे दे उते रख के बजा के दुनिया नूं घूम फिर के वेख्या। मंदल कंध चढ़ाए कंधे दे उते, मंदल रख के कंधे दे उते ढोल रख के, कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। कहन लगे कोई किसे दा नहीं, मैं ठोक बजा के वेख लिया, परख पड़ताल करके वेख लिया। आखिया तैं जेवड मैं नाहे को, तेरे वर्गा साईं जी रब जी कोई भी नहीं है, नाहे को दुनिया दे अंदर तेरा सानी कोई नहीं। सब जग डिठा हंड, ते ए गल मैं सारे जगत नू हंडन तो फिरन तो विचरन तो बाद कह रहा, तजर्बा करन तो बाद कह रहा। हुण ए मर्जी साडी है कि जिस खुदाबंद करीम वास्ते भगत जी कह रहे ने तैं जेवड़ मैं नाहे को, ओदे नाल जुड़े रहना है या उन्हूं छड़ के किधरे सज्जे खब्बे भटकना है, ए मर्जी तुहाडी है। भगत फरीद साहब ते उस दीन दयाल दियां कथा कहानियां कर करके साडी झोली दे अंदर उपदेश पा रहे ने। तो ये दो श्लोक जिन्हां नूं आधार बना के कुछ बेनतियां करन दा निमाणा यतन कीता गया, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन, जिन्ने माई भाई श्रोते गुरु की गोद दा आनंद लै रहे हो सबना दे मना अंदर सतगुरु गुरमत ज्ञान दी बख्शिश करन, अग्ञानता वाला हनेरा दूर करन। तमाम
1: हे प्राण नाथ गोविंद कृपा निदान जगद गुरु, हे संसार ताप हरण करुणा मैं सब दुख हरू, हे शरण जोग दयाल दीना नाथ मया करू। शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधुवै, वाहे गुरु साहिब जीओ फरीदा

टीमा दे अंदर कुश्ती लड़ी जानी और फलाने फलाने ग्राउंड दे अंदर फलाने फलाने दंगल दे अंदर कुश्ती लड़ी जानी है पहलवाना वांगू। एक मनुख ने कदी शरीर नू गर्म कीता ही नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं कीती, कोई पोल कुश्ती दे तापे सिखे ही नहीं, खुराक खाती नहीं, शरीर बनाया ही नहीं, ते छेड़ा कुश्ती दा दिन हुंदा है, उस दिन जाके वो दंगल दे अंदर शर्मशारी होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि सिखन दे समय वो सुता रहा ते लड़न दे समय मैदान दे अंदर उन्दे पले केवल शर्म पई। जिन्हां ने पहला मेहनत की, जेडे पहला खुराक खांदे रहे, एक्सरसाइज करदे रहे, उस्तादां कोलों दा पे सिखदे रहे, शरीर नूं उन्हां ने सुस्त ना पैण दिता, उन्हां नूं उस दिन जित मिली, जेतू नूं वधाइयां मिलियां, जित दा झंडा उहदे हथ विच आया, सोने दे तगमे उहदे गल विच आए, ते जेड़ा सुत्ता रहा बेहोशी दे अंदर उह वेखी जाएगी, जेड़ा दिन आएगा उस दिन कोल लवांगे, उन्हां दे पल्ले केवल पछतावा रहा। अगर मनुख अपना सारा जीवन अजाई गवा लवे, कोई गुणवान ना बने, कोई परमात्मा दे राह ते ना चले, कदी इहदे मुंह विचों भुल के वाहिगुरु लफज बार ना निकले, कोई बाणी ना पढ़े, गुरबाणी दे अनुसार जीवन नूं बनाए ना, जीवन भर करदा रहे बुराइयां, गुरबाणी दे अनुसार चले ना, ते मैं फिर बेनती करा गुरबाणी नूं पढ़न नालों गुरबाणी नूं मन के वेखो आनंद जीवन दे अंदर किन्ना बनदा है। गुरबाणी नूं पढ़ो, जिन्नी वध तों वध पढ़ी जांदी है, पर पढ़ के छड्डो ना कि जुबान ने पढ़ी है ते कहानी खत्म हो गई। गुरबाणी दा जो हुक्म है उन्हों अपने जीवन दे अंदर टालन दा यतन करो, टालन दा, ते जिस दिन गुरबाणी दे गुणा नूं जीवन विच टालोगे आनंद उस दिन ही बनेगा, उस तों पहला नहीं बनेगा। जे गुरबाणी कह रही है निंदा नहीं करनी, ते फिर उजर मामले दी गुंजैश किथे है, फिर निंदा करनी छड्ड दे। अगर सतगुरु कह रहे ने चुगली माड़ी है, ते फिर चुगली करना त्याग दे। अगर सतगुरु ये कह रहे ने कि बहु परपंच कर पर तन लियावे, सुत दारा पह आन लुटावे, मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत नबेरा तेरे जी पै लीजे, के पराए तन नूं लुट लुट के अपने घर दे अंदर लियाउणा छड्ड, ठगियां ठोरियां दे जाल विछाउणे छड्ड, ते फिर ये कम करने त्याग दो, इहदे अंदर तुहाडा जीवन सफल रहेगा। तुहाडे मन दे अंदर चैन सुकून शांति सहज ये सब कुछ बनेगा। असी गुनाह करने छड्डदे नहीं आ, ते पांच डालर जेब विचों कढ के ग्रंथी सिंह दी तली ते रख के भाई साहब अरदास करो, मेरे जीवन विच बेचैनी बड़ी है, मैनू रात नूं नींद नहीं आउंदी, नींद आ जाए। हुण नींद तैनूं आवे किवें? दुनिया भर दे गुनाह कमा रहा है, ते पांच डालरां दे आसरे तू रात दी नींद मंग रहा है, पांच डालर दे अंदर ते होटल दा कमरा नहीं मिलदा, तैनूं नींद कित्थों मिल जाए? तू चाहुंदा है कि मैं माया दे के सुख खरीद लवां, ते सतगुरु कहिंदे ने माया दे के सुख मिलदा नहीं, ओ जदों मिलदा है गुणा दे इवज मिलदा है, गुणा दे बदले विच मिलदा है। तो खैर भगत फरीद साहब जी दा जिहड़ा सलोक जिन्हों आधार बना के मैं बेनतियां कर रहा, ओ कहिंदे ने फरीदा जां तो खट्टन वेल तां तू रत्ता दुनी स्यों। गुरबाणी दा इक वचन मेरे सामने होर आउंदा है, पातशाह कहिंदे ने 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कष्ट अपना कियो। हुण 12 ते 20 इन्हां नूं जमा करो किन्ने बन गए 32। कहिण लगे 12 बरस बालपन बीते, 12 साल उम्र दे तेरे बीत गए न्याणी उम्र दे अंदर, बालपन दी बहार दे अंदर, बचपने दे अंदर। उस तों बाद अगले 20 साल ओ बीत गए तेरे नशियां दे अंदर, विकारां दे अंदर, मौज बहारां दे अंदर। रब नूं तूं टिचकरां करदा रहा, मजाक करदा रहा, तन भरे बोल कहिंदा रहा। कहिण लगे 20 बरस कष्ट अपना कियो, इह बण गए 32 साल। इस तों बाद अगला 30 साल दा समां, कहिण लगे 30 बरस कष्ट देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद पयो। अगले 30 साल होर बीते, ते बीते इस तरह ही विकारां दे अंदर, गुनाहां दे अंदर, हेरा फेरी दे अंदर, चुगली निंदा दे अंदर। कहन लगे उम्र हो गई 62 साल, ते 62 साल दे अंदर बुढ़ापा आई जांदा है। 12 ते 20 32, ते अगले 30 इहदे विच जमा करो बन गए 62। 62 साल दे अंदर पहुंचदिआं पहुंचदिआं ते शरीर नूं बुढ़ापे दा रोग घेर ही लैंदा है, ते कहन लगे फिर पशुताना।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निकी गोदा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो, आप रोज सवेर दे वकत सत्कार योग भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों उन्हां दे सलोकां विचों कथा विचार सरवण करदे आ रहे हो। अज तुहाडे सामने तीन सलोक भगत फरीद साहब जी दे पढ़ के सुनाए गए। पहला श्लोक, देख फरीदा जो थिया दाढ़ी होई पूर। कह लगे कि अपने जीवन दे अंदर ध्यान दे के वेख की होया नजर आ रहा है, जो थिया जो हो चुका है, जो बन चुकी है खेड, वो ए नजर आ रहा है कि दाढ़ी होई पूर। तेरे दाढ़ी दे वाल रंग अपना बदल के सफेद हो गए ने, काली हूं हुण तौले आए, पवर गए बग बैठे आए, काले रंग जवानी दी निशानी वो चले गए, चिट्टा रंग बुढ़ापे दी निशानी वो आण के तेरे उत्ते बह गए। और नाल ही अगली पंक्ति विच कह रहे ने, अगों हुण नेड़ा आया। अगे नेड़ा केड़ा पासा आ रहा है? अगे मौत ते पिछा रहा दूर पिछे जन्म। मौत नेड़े नेड़े आउंदी नजर आ रही है ते जन्म दा दिन पिछे दूर रह चुका नजर आ रहा है। साढ़े जीवन दी सारी खेड जन्म ते मरण दे विचकार चल रही है। साड़ी शुरुआत जन्म तो हुई, साड़ा अंत मौत ते जाके हुंदा उत्ते हुंदा है। जन्म दे नाल असी कुछ नहीं सी, मौत तो बाद कुछ बन सकन दी समर्था साड़े विच नहीं है। जन्म ते मौत दा ए विचकारला समा, विचकारले समय दे अंदर ही असी अमीर हां, गरीब हां।

0: गुण देने वाले परमात्मा नूं करदे ने। तुसी नहीं कह सकते कि यह बंदा अपने चित दे अंदर बड़े माड़े विचार या बड़े चंगे विचार चला रहे, नहीं कह सकते बाहरों वेख के, यह उन्हें पता है। ते हजूर कह रहे ने जे को चित करे परमात्मा का संबंध अपने चित दे नाल बना, बारों बारों संबंध बनिया ते नजर आ रहा है। हाथ विच गुटका है, सारिया नूं दिस रहा है, गुटका फड़ के पाठ करदा है, सारिया नूं दिसदा है, नेत्र बंद करके बह के सुन रहा है, पर तेरा चित ते किसे नूं दिसदा नहीं है। अपने चित नूं आप वेख के ओ जिस गुटके तों अखां बाणी पढ़ रही ने उहदे विच है जां नहीं। अखां बंद ते कीतियां ने कि मेरा चित कथा विच कीर्तन विच है जां नहीं है। कहन लगे जे को चित करे, भगा कहिंदे ने अपना लाया पिरम ना लगे जे लोचे सब कोए। सब कुछ करन कराउन तो बाद शुभ कर्म भी बंदा करदा रहे, चित करके परमात्मा दा चिंतन भी करदा रहे, चित दे अंदर उहदे शुभ विचारां दी गुणां दी माला नूं चलाउंदा रहे, ये सब कुछ करन कराउन तो बाद कहन लगे एक अरदास करनी कदी भी ना भुले। पातशाह केड़ी अरदास, ये सब कुछ करन कराउन तो बाद भी तू यही कहिंदे रहना है कि हे निरंकार मेरे यतन मेरे प्रयतन नूं फल तां लगेगा जे तू अपनी कृपा विच मलाएगा। इकला कर्म मंजिल तक लैके नहीं जांदा, उहदे कर्म दी नाल बड़ी जरूरत है, उहदी कृपा दी नाल बड़ी जरूरत है। अगर मेरे कर्म करन करके परमात्मा मिलदा है ते फिर ते मेरे कर्म परमात्मा दा मुल होया, फिर ते कोई भी बंदा कर्म करके परमात्मा नूं पा लवे, 150 साल दा समां खर्च करके रब नूं पा लवे ते फिर ओह बेअंत कादा रहा। ओह जदों वी मिलदा है इधर कर्म ते उधर परमात्मा दी कृपा, इधर मेहनत ते उधर रहमत, पर मेहनत नालों उहदी रहमत ज्यादा रंग लियांदी है। आख्या कर्म ते कर, यतन ते कर के मैं चित विच परमात्मा नूं चेता करां, पर सब कुछ करन तो बाद भी रब जी दे सामने अरदास ए कर के सतगुरु मेरा प्रेम कीता होया तेरे नाल रंग नहीं लियाएगा जिन्ना समा तू मेरे ते कृपा नहीं करेगा। कहन लगे अपना लाया पिरम ना लगे जे लोचे सब कोए, ए पिरम प्याला खसम का जय पावे तैते। सतगुरु ए प्रेम वाला प्याला तेरी दात है, ए दात उन्हें मिलती है जिदे उत्ते तू मेहरबान हो जाना है, जिदे उत्ते तू त्रुट पैना है। फिर परमात्मा दे प्रेम वाली दात ना ते लुटी जा सकती है, ना खोई जा सकती है, ना चुराई जा सकती है, ते ना इनू साड़िया जा सकता है, ना इनू बर्बाद किया जा सकता है। ये दात मिलदी परमात्मा दी रहमत दे द्वारा है, उहदी कृपा दे द्वारा। आख्या जय भावे तां दे, खुदा मैं ते कर्म कर रहा पर मेरे कर्म इकले की करनगे जे तेरी कृपा ही ना होवे, मेरे कर्म की करनगे। आख्या जय भावे तां दे। तीसरा श्लोक भगत फरीद साहब जी दा, कहन लगे फरीदा कुकेंदियां फरीदा जिन लोयन जग मोहया, लोयन मैंने अखां। कहन लगे जिन्ना अखां दे नाल जगत नूं वेखदा रहा ते अखां दे वार कर करके जगत नूं ठगदा रहा। कहन लगे जिन लोयन, जिन्ना इन्हां दो अखां ने जगत नूं मोहया सी, से लोयन मैं डिठ, उन्हां अखां नूं मैं वेखिया। जवानी दे अंदर अखां दी बहार बड़ी सी, बुढ़ापे दे अंदर ना रहे। जवानी दे अंदर अखां दी चमक बड़ी सी, बुढ़ापे दे अंदर ना रहे। जवानी दे अंदर इन्हां नूं दूर दूर तक वेखण दी तौफीक मिली सी, बुढ़ापे दे अंदर इन्हां दा वेखणा भी बंद होया। पानी आप मुहारे चलना शुरू होया, अखां दी सुंदरता अपने आप चली गई। भगत जी कहन लगे से लोयन मैं डिठ, उन्हां अखां नूं मैं वेख्या है। कज्जल रेख ना सहिंदियां से पंखी सूए बहेट, इन्हां अखां दे अंदर सुरमे दी तारी पैंदी सी, बर्दाश्त नहीं सन करदियां। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਖੀ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਖੀ ਸੂਏ, ਸੂਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਨੇਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦਰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1: ਫਰੀਦਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾ ਗਿੰਦਿਆਂ ਮੱਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਤ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਜਾਇਆ ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰੇ ਚਿਤ

जानई सिर पी मिट्टी खाए। फरीदा मैं पुलावा पगदा मत मैली होए जाए। गैला रूह ना जानई सिर पी मिट्टी खाए। फरीदा शक्कर खंड नीवात गुड़

ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਨ ਤੁਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਗਰ ਆਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਨੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਘਰ ਬਾਰ, ਮੋਟਰ ਕਾਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਦ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ। ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਤੋ ਖੈਰ, ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਤੇ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਲ ਚਾਹੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਧਨ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ।
मैल हटाना इहदा लक्ष्य है। साधन बदलते रहे ने, हुण भी बदल रहे ने, बदलते रहेंगे। साधन दे नाल फर्क नहीं पैंदा, गल ते इह है कि अंदर मैल ना रहे, कपड़े दे उत्ते मैल ना रहे। एक बेनती मैं भी करदा चला, बाहर दी मैल जो साडे शरीर जां शरीर ते पाए हुए कपड़िया दे उत्ते जां सज्जे खब्बे मैल दिसदी है, एक गर्दो गुबार मिट्टी घटे दे कारण है। बाहर दी मैल गर्दो गुबार मिट्टी दे कारण है, ते अंदर दी मैल बुरा वेखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा सोचना, इस दे कारण है। जो अंदर मैल बनती है वो बुरा वेखन बोलन सोचन करके बनती है, जो बार मैल बनती है वो मिट्टी कट्टा हनेरी तूफान गर्दो गुबार इहदे कारण मैल बनती है। बार दी मैल अंदर नहीं जाती है, और अंदर दी मैल ये साडे इंद्रियां दे राही बदल बदल के बार आउंदी रहिंदी है। तन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी है, कहन लगे परिय हाथ पैर तन देहे पानी तोते उतरस के है। ये बाहर दी मैल है, अगर हाथ पैर भर जांदे ने तो पानी नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी, साबण नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी। परिय हाथ पैर तन देहे पानी तोते पानी दे नाल तो लो उतरस के है, लगी हुई मैल उतर जाएगी चली जाएगी। मूत पलीती कपड़ हुए देसा गोन लईए उह तोए, अगर कपड़े भी किधरे चिकड़ लवरेज हो गए ने ते कह लगे साबुन दी वरतों करन दे नाल ओ भी उजले हो जाएंगे साफ हो जाएंगे। पर किसी ने प्रश्न किया, साहब जी अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते केड़ी सरफ ते केड़ा साबण ते केड़ा पानी वरतों विच लियाईए, मैल अंदर चली जाए ते अंदर दी मैल नूं बाहर कढ़ना होवे धोना होवे तो फिर प्रश्न साडा ए धुपेगी किवें। हजूर कहिंदे ने कि परिय मत पापां कै संग उह धोपै नावें कै रंग। गुरबाणी दे अंदर लफ़ज़ जिहड़ा आया ना उह पाप आया, अपराध नहीं आया इस जगह दे उत्ते। इस तरह नहीं है कि अपराध लफ़ज़ आया नहीं, पर इस जगह दे उत्ते कहन लगे परिय मत पापां कै संग, क्योंकि पाप बीज है ते अपराध उस बीज तो वधन फुलन वाला दिसन वाला बूटा है। पाप जड़ है ते उस पाप दी जड़ दे सहारे दे उत्ते जिहड़ा पनपण वाला है वह अपराध नाम का बूटा है। इस तरह कह लो पाप अंदर हुंदा है ते अपराध बाहर हुंदा है, है भावे दोवें गुणा दोवें दोष दोवें तरह की मैल है, पर पाप मन दे नाल संबंध रखता है ते अपराध तन दे नाल संबंध रखता है। जो तुहाडे अंदर माड़ी सोच चल रही है, बुरी सोच चल रही है, कामुक सोच, क्रोध, निंदा, चुगली, ईर्षा, तरह तरह दियां बुरियां विचारां जो चल रही ने, उहदा नाम पाप है। उस पाप तो अगे आण के जिहड़े बुरे कर्म करने असीं शुरू कर दिंदे आ उहदा नाम अपराध है। अपराध नूं डर हुंदा है हथ घड़ी दा, कानून दा, समाज दा, पर पाप नूं ते भी डर नहीं है, क्योंकि पाप तां किसी दी निगाह जांदी नहीं है। पाप ते किधरे मंदिर मस्जिद दे अंदर बह के भी कीता जा सकदा है। खिमा चाहवांगा की सोच रहे हो तुसीं इस वक्त मन दे अंदर, कोई दूसरा ते नहीं जानदा, बिल्कुल तुहाडी बगल दे अंदर तुहाडे नाल बैठा होया दूसरा प्रेमी दूजा सतसंगी नहीं जानदा तुहाडे मन दे अंदर की विचारां दी तारा चल रही है। पर तुहाडे तन नूं ते आपां वेख ही रहे हां, सारे एक दूजे नूं वेख ही रहे हो कि तन आराम पूर्वक बैठा है, मन भी बैठा है नहीं बैठा है ते तुहानूं पता है जां सतगुरु नूं पता है। तो पाप ना कानून दी पकड़ विच आउंदा है, ना समाज दी पकड़ विच आउंदा है, अगर आउंदा है ते धर्म दी पकड़ विच आउंदा है, निरंकार दी पकड़ विच आउंदा है। निरंकार जानदे ने अंदरों असी मैले हां, अंदरों असी पवित्र हां, निरंकार जानदे ने। दूसरे जो भी फैसला लेंदे ने उह साडे बाहर मुखी जीवन नूं वेख के फैसला लेंदे ने। साडा बहना उठना चंगा है, तुरना फिरना चंगा है, बोल बाणी चंगी है,
लोग कह देंदे ने गुरमुख है, पर मैं गुरमुख हाँ मनमुख हाँ, ये मैनू खुद नू पता है ते या सतगुरु साहब जी नू पता है, गुरु ग्रंथ साहब जी नू पता है। खैर मैं एक बेनती करदे चला, डॉक्टर इकबाल इस तरह भी कहिंदे ने कि एक ही चेहरे पे हजार चेहरे बना लेते हैं लोग, यही चेहरा गुरुद्वारे दे अंदर कुछ होर दिसदा है, यही चेहरा दुकान दे उत्ते किसे होर रंग विच दिसदा है, यही चेहरा किधरे कारोबार दे अंदर होर रंग पकड़ के अपने उत्ते जमाया होया दिसदा है, यही चेहरा मां दे सामने हो रे, पत्नी दे सामने हो रे, धी दे सामने हो रे, समाज दे सामने हो रे, ते गुरुद्वारे दे अंदर हो रे। गिरकत अपने रंग बदलदा है, मनुख अपने चेहरे दे मखौटे बदलदा है, ते मखौटे बदलन दी इहनूं बड़ी चंगी तरह जांच है। मखौटे किवें बदलने ने, किधरे गमी वाली जगह ते चला गया है, किधरे अफसोस करन वास्ते किसे दे घर विच जाना पिया है, उत्थे कोई सोग समाचार है, इहदे अंदर भावें गमी नहीं पर चेहरे दे उत्ते बनावटी गमी दा मखौटा पाउणा इहनूं आउंदा है कि बनावटी गमी चेहरे दे उत्ते किवें लियाई दी। किधरे खुशी वाली जगह ते चला गया है, किसे दे व्याह दे अंदर, किसे दे बच्चे दे जन्मदिन दे अंदर, किसे दे कारोबार दी ओपनिंग दे अंदर चला गया है। अंदर पावे जैलसी है, अंदर पावे ईर्षा है, पर बनावटी खुशी दा मखौटा बना के उन्हां नूं बधाई देण दी इहनूं बड़ी चंगी तरह आदत है, कुशल है। ये जानदा है कि खुशी दा मखौटा कदों पाउणा है ते कमी दा मखौटा कदों पाउणा है। खैर इह मेरा विशा नहीं सी। अंदर जो बुराई है उहदा नां पाप, जो बाहर बुराई प्रगट होके आ जांदी है उहदा नां अपराध। बस एक नुकता याद रखो, अपराध बाहर हुंदा है ते पाप हमेशा अंदर हुंदा है। हुण अपराध तां ही बनदा है ना जे पाप अंदर होवे, ते जे पाप ही अंदर ना रहे ते अपराध नूं पनपण वास्ते समा मिलेगा ही नहीं, अपराध बनेगा कित्थे। अगर जमीन विच तुसीं बीज अंबां दा बीजिया ही नहीं, अंब दी गुठली बीजी नहीं, ते अंब दा बूटा पैदा भी किवें होएगा। जमीन दे अंदर एक जिमीदार जिस तरह की फसल का बीज बीजदा है उस तरह दे ते बूटे पैदा हुंदे ने, दूजे ते नहीं। अगर बीज ही नहीं तो फिर बूटा भी नहीं। पाप नहीं ते कहना पएगा दुनिया दे अंदर अपराध भी नहीं दिसेगा। तो गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी गल जड़ तो फड़दे ने, मुढ़ तो उपरों उपरों रुख दियां एक दो टहनियां कट दई है, उहदे नाल दुनिया दे अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी ये मिटने ते नहीं है। रुख दियां जड़ां अगर जमीन विच लगियां ने, उपरों उपरों पत्ते झाड़ दिओ, पत्ते नवे आ जांदे ने, फुल तोड़ लैंदे हो फुल नवे आ जांदे ने, फल तोड़ के खा लैंदे हो फल फिर समा पा के नवे आ जांदे ने, टहनियां नूं आप कट देंदे हो, दो टहनियां कट दे हो, दो दूसरी शाखा दे उत्ते दूसरे टहने दे उत्ते नवीं शाखावां जन्म लै लैंदियां, एक टहनी नूं कट रहे हो दूजी नवीं जन्म लै रही है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि अजे जड़ मौजूद है। अगर जड़ ना रह गई ते ना रुख दे उत्ते पत्ते आउणगे, ना फुल आउणगे, ना फल आउणगे, ना दोबारा दोबारा हरियाली आएगी। तो गुरु नानक देव साहब जी गल जड़ तो आरंभ करते हैं, कहन लगे भरिए मत पापा कै संग, अंदर किवें भरदा है पाप दे नाल। कहन लगे भरिए मत पापा कै संग, हुण अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते ना ते कोई साबण, ना कोई सरफ, ना कोई होर लिक्विड, ना कोई पानी नहीं धुपेगी। हुण मैल धुपेगी किवें? पुछिया हजूर फिरे मैल जावे किवें? कहन लगे ओह धुपै नामे कै रंग, धुप जाएगी, मायूसी दी लोड़ नहीं है। पर जिस साबण या निर्मल जल नूं वरतों विच लियाउण तों बाद ओह मैल जाणी है, उहदा नां है परमात्मा दे गुण, परमात्मा दा चिंतन, ओह धुपै नामे कै रंग। एक बेनती मैं होर करदा चलां, सुखमणी साहब दी पाक बाणी नूं आप उचेचे तौर ते प्यार सहित पढ़दे जपदे सुणदे वेख्या जांदा है। सुखमणी साहब दे अंदर हजूर दा प्रमाण ने सोच करे दिनस अर रात, इहनूं लफ़ज़ नूं सोच नहीं पढ़ना, सोच दा मतलब है सोचना, सोच दा मतलब है विचारना, सोच सोच दा मतलब है जिवें आपां कहिंदे आ मैं तन पवित्र रखना है, तन सुचा रखना है। सोच करे दिनस अर रात,
मणकी मैल न तन तेजात। कहन लगे दिन पर रात बारो सुचा हुंदा यतन करदा रहे, बिंद बिंद हाथ धोंदा रहे, बारो तो बिलकुल पवित्रता रखण विच कामयाब दिसे। पर कहन लगे इस तरह करन दे नाल तेरे मन नू की असर पएगा। ठीक है लोकां दे सामने इन्नी कु तेरी इमेज बन जाएगी बड़ा पवित्र है, बड़ा सुचा रह के चल रहा है, ए बिल्कुल भी झूठ दे नेड़े तेड़े नहीं जांदा, ब्राह्मण वांग बड़ी सुचता है, बड़ी पवित्रता है। पर तेरी उस सुचता दा मुल तां ही पैंदा है जे मन सुचा होवे। अगर मन सुचा नहीं तो फिर इस बारी पवित्रता दा ते बारी सुच दा कोई मैना नहीं, कोई अर्थ नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया विच बहना चाहो ते लिबड़े तिबड़े आण के बह जाओ, तन साफ नहीं चाहिदा, यह मेरा मतलब नहीं है। जिहड़ी विखावे दी वाधू सोचे मैं उहदी गल कर रहा, जिहड़ी पखंड दे अंदर लेके चली जांदी उहदी गल कर रहा। हुणे आप श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन सुन के हटे हो, पातशाह एक सलोक दे अंदर कह रहे सन गुरु नानक देव पातशाह के देके चौंका कड्डी कार, उपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एह अन्न असाडा फिटे, तन फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली प्रेन। अखीर दे उते कहिंदे ने कहो नानक सच त्याइए, सुच होवे तां सच पाई है। हुण एक बेनती मैं होर करां, जे कोई तुहाडे ते प्रश्न करे वी तुहाडा गुरु उत्ते ते गल करदे ने वी चौंका देना, गोबर दे नाल लेप करना, कार कढ़नी, लकड़ियां धो के बालनियां, ये पवित्रता इहदा खंडन कर रहे ने, ते अखीरली पंक्ति विच जाके कह रहे ने सुच होवे तां सच पाई है, तो फिर गल विरोधी लगेगी ना, वी अखीरली पंक्ति विच कह रहे ने सुच होएगी ते तां सच मिलेगा। पर प्यारियो इहदा थोड़ा जिहा विश्राम दा ही भरम है, विश्राम देना तुहानू आ गया ते अर्थ अपने आप साफ हो जाएगा। हजूर कहिंदे ने कहो नानक सच त्याइए, सुच होवे तां, सुच हुंदी तां है सच पाई है, सुच बनदी तां है जे सच मिल जाए, सुच होवे तां, तां सुच बनदी है अंदर दी सच पाई है, जे सच दे गुणा नू अपने हृदय विच वसा लवे। ते असी की पढ़ के निकल जाने, सुच होवे तां सच पाई है। असी एक विश्राम दे कारण अर्थां दे अंदर जमीन शमान दा फर्क खड़ा कर देने, सुच होवे तां सच पाई है। एक जगह ते मैनू गुरबाणी दा बोल होर भी चेते आउंदा है, पातशाह कहिंदे ने अंतर मैल गल मैं मन दी मैल ते तन दी मैल दी तुहाडे सामने रख रहा, क्योंकि फरीद साहब जी दा हुक्म अज इस तरह दा आया है। कहन लगे फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली हो जाए, मैं ते पग दे भरम विच रहा कि मैली ना होवे, मत मैली हो जाए, गहला रूह ना जाने कि सिर भी मिट्टी खाए, मैं सिर भी मिट्टी ने खा जाना है, मैं ते सिर ते बद्दी पग दा ही बड़ा ध्यान रखे, मन मैला हो जाता है, इहदा ध्यान किसे नू है, तन मैला ना होवे इहदा ध्यान सानू सारिआं नू है। भगत कबीर साहब जी कहिंदे ने अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, गुरबाणी दे बचन ने और कबीर साहब दी रसना दे बचन ने। हुण इन्हां बचना नू सुनन तो बाद जे बंदे दे मन दा भरम ना जाए ते फिर ते खिमा चाहवांगा, महा अग्ञानता दे हनेरे विच ही इह खड़ा है, फिर ते इहनों ना गुरु दी आवाज सुनदी है ते ना किसे दूसरे दी। कह रहे ने अंतर मैल, अंदर तेरे हुए मैल, अंतर मैल जे तीर्थ नावे ते नौंदा फिरे अठाठ तीर्थां दे उते, अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ ना जाना। कहन लगे इस तरह कम करन दे नाल मनुख नू बैकुंठ ताम नहीं मिलदा, परमात्मा दे चरण नहीं मिलदे। तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कशु ना होवे नाही राम एयाना, लोक पतीने, पतीने मैंने पतीज जाना, पतीज मैंने विश्वास करना, लोक तेनू चंगा कहन, इस गल दे नाल कबीर साहब कहिंदे ने फर्क नहीं पैना, लोक पतीने तू लोकां दे सामने विखावे दी सोच रखे, कहन लगे दे नाल फर्क नहीं पैना, क्यों नहीं पैना, कहन लगे नाही राम एयाना, परमात्मा न्याणा नहीं है कि जो तेनू अंदरों जानदा नहीं,
ਉਹ ਸੁਗਣ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਵੇਖਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ। ਭਗਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ, ਮੱਜਣ ਮੈਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇਰਾ ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ, ਮਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੇਖਣਾ ਮਾੜਾ, ਸੋਚਣਾ ਮਾੜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੇਂਢਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਓਏ ਮੈਨੇ ਉਹ ਨਰ ਮੈਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਕਪਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਪਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ, ਕਾਇਆ ਮੰਜ ਸਕਾਉਣ ਗੁਣਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਮਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਮੰਜਸ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਂਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੁਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਉਣ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇਤਨੀ ਛੂਆ ਛੂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁੱਚਤਾ ਰੱਖ ਲੋਗੇ। ਸੁੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾ ਹੁਕਮ
रोक दिता गया कि तू तंबाकू सेवन नहीं करना। कारण सी उहदा, अज हर शराब की बोतल दे उते लिखिया होया मिलदा है सेहत लई हानिकारक है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने गुरु नानक साहब जी की पाक बाणी ने सानू हुक्म ला के रोक दिता तू इस पासे नहीं जाना। खिमा चाहवांगा बोल मेरे कुछ खुले ने। अच थां थां दे उते मीडिया दे अंदर रौला है कि एड्स की बीमारी का इलाज केवल परहेज है, पर धन श्री गुरु नानक देव पातशाह ने बा हुक्म रोक दिता कि बस संग एक ही शरीर का चाहिए, बहुतिया शरीर का नहीं चाहिए, ताकि तू तन करके भी तंदुरुस्त रहे, तन करके भी रोगी ना बने, तन करके तंदुरुस्त रहे, इस तरह के नियम बनाए, मन करके तंदुरुस्त रहे, गुरबाणी तेरी चोली विच पाई, गुरबाणी दे नाल जुड़। पर साडा सारा जोर बाहरी सोच दे उत्ते लग जांदा है, अंदर सोच बनदी है नहीं बनदी है, इस पासे साडा ध्यान जांदा ही नहीं। ते मैं ते होर भी कई बारी हैरान हुंदा, एक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल जाना है ते इशनान करके जाओ, पर दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु ग्रंथ साहिब नहीं है, दूजे दे कोल जाना है ते कोई परवाह नहीं, भावे कोई तीन दिन का नाता है नहीं नाता, ओदे कोल रौल लाउन जाना है ते कोई बंदिश नहीं है, एक दे कोल रौल लाउन जाना है ते इशनान करना लाजमी है। कम से कम मर्यादा ते एक बना लो, या ते कहो करके जाना है, या कहो सवेर दा कीता काफी है, या कहो हर रौल ते करना काफी, एक मर्यादा ते एक घर दी कायम कर लो। एक घर दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं, एक गुरुद्वारे दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं है। खिमा चाहवांगा तो खैर गल मैं मैल दी कर रहा सां। तन दी मैल नालों मन दी मैल हजार गुणा बदतर है। मन दी मैल हजार गुणा बुरी है तन दी मैल नाल। मन दी मैल अति बुरी है, निरंकार दे घर दे अंदर प्रवेश करन ही नहीं देंदी। अगर किसी दे तन दे उत्ते पाए हुए कपड़े कालख दे नाल भरे होन, मिट्टी कटे दे नाल चिकड़ दे नाल भरे होन, या उहदा तन चिकड़ दे नाल भरिया होवे, कि आप उहनूं कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के मिलदे हो? अगला चिकड़ दे विचों निकल के आया होवे तो की कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के उहनूं आप मिलदे हो? मिलना चाहुंदे हो पर ये कहिंदे हो कि पहला सजना इशनान पान कर, अपने तन दे कपड़े उतार, तन दे कपड़े बदल, तन दे कपड़े साफ कर, तन साफ कर, ते तां उहनूं आपां अपनी गलवकड़ी विच लै के मान देने हां उस तों पहला नहीं। जे तन मैला है ते असीं अपनी गलवकड़ी विच नहीं लैंदे। ऐलानिया कह देना चाहुंना, जे मन मैला है ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गलवकड़ी दे विच भी नहीं आ पाओगे। गुरु ने वेखना है तेरा मन उज्जल है या नहीं है, पवित्र है या नहीं है। तन मैले वाले नूं असीं कोल नहीं बहन देंदे, मन मैले वाले नूं सतगुरु कोल किवें बिठाउणगे? सतगुरु दी गलवकड़ी दा निघ किवें पा सकेगा जिहदा मन

0: तेरे अंदरों पशु पुना मर जावे, नरू मरे तेरे अंदरों मनुखता मर दी, ये तो किसे काम दा नहीं। पशु मरे तेरे अंदरों पशु सुभा पशु बिरति मर दी है, ते तां तू किसे काम दा है उस तरह नहीं। मैनू एक अदीब दा बोल चेते विच आउंदा है, उह कहिंदा है रोशनी इंसान की गुम हो गई कहां, शाये आदमी के है मगर आदमी कहां। कहिंदा आदमी विचों आदमीयत मरी हुई नजर पै रही, इंसान विचों इंसानियत मरी नजर पै रही, शाये आदमी के है मगर आदमी कहां। ते गुरु अर्जन देव साहब जी कहिंदे ने करतूत पशु की, तेरा कर्म तेरी करतूत तेरा सुभाव पशु वाला है, मानस जात जात तेरी मनुख वाली है, इनू छड़ेंगा ते गल बनेगी वरना नहीं। पशु पुणे नू पशु सुभा नू पशु बिरती नू अंदरों मारना है धर्म दे राह दे उत्ते, तां चल पाओगे वरना नहीं। तो अपने विषय नाल जुड़ो, भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने कि दूसरे दा चंगा कारोबार वेख के, भोजन मकान कपड़ा कार अडंबर वेख के अपने मन नू ना ते ईर शालू बना ते ना अपने मन नू तरसा के मेरे कोल नहीं है। तू कर्म करना है, कर्म करना तेरा फर्ज है, तेरे कर्म नू वेख के निरंकार तेरी झोली दे अंदर दान कदों बख्शदे ने, ए निरंकार दी मर्जी, अज बख्शन कल बख्शन। मैं एक उदाहरण कह के खिमा दा जाचक होवां, भोजन खाना साडे वस विच है, खाते हुए भोजन दा खून साडे शरीर नू किन्ना चाहिदा है, एक कतरा चाहिदा है दो कतरे चाहिदे ने, उहदा भोजन दा खून बनाउणा ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਬਣੇ, ਚਾਰ ਛਕੋ ਦਸ ਛਕੋ ਅੱਠ ਛਕੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਓਨਾ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੇਸਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमात्मा दे राह दे उत्ते चलना, चंगे कर्म करने, उदा चिंतन करना, उदा जाप करना, इह साडे वस विच है। ओ त्रुट के ओ रस कदों बनाउंदा है, मन कदों टकाउंदा है, इह ओदी खेड है, ओदे वस विच है। आपां अपना कर्म करदे चलीए, ओदी गल ओदे उत्ते रहिंदी है, ओ कदों साडे ते मेहरबान होएगा, कदों मन दौड़दा होया टिक जाएगा, इह परमात्मा दी रहमत दे नाल होएगा। तो भगत फरीद साहब जी दे इन्हां श्लोकां नूं आधार बना के जो मैं आप संगत दे सन्मुख बेनतियां कर रहा सां, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कृपा करन सब दे मना दे अंदर गुरमत ज्ञान दी रोशनी बख्शन।
1: अज ना सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछों डोहागनी तुम क्यों रहन बिहाए।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनो, चल रही लड़ीवार कथा विचार आप रोज रोज श्रवण करते आ रहे हो। भगत फरीद साहब जी दी मुबारक बाणी विचों अज जो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, सहुरे टोई ना लहै पेये ना ही थाओ। दो थावां दा जिक्र भगत फरीद साहब ने बाणी विच फरमाया, एक सौरा घर ते दूसरा पेका घर। कहन लगे जिसनू सहुरे घर दे अंदर भी टोई ना मिले, टोई दा मतलब सहारा ना मिले, रहन वास्ते जगह ना मिले, पेके घर दे अंदर भी रहन वास्ते जगह ना मिले, वो जीव आत्मा आखर जाए किधर? क्योंकि बसियां जन्म लेंदियां ने, उम्र दा कुछ हिस्सा गुजार देंदियां ने पेके घर दे अंदर, ते बाकी दा उम्र दा हिस्सा गुजारिया जांदा है सहुरे घर दे अंदर। जिदे पास पेका घर भी नहीं सहुरा घर भी नहीं तो फिर आखर वो जाए किथे? कहन लगे सहुरे टोई ना लहै। हुण इस रमज नूं थोड़ा जिहा समझण दा यतन करियो। सहुरा घर बयान कीता है परमात्मा दे घर नूं, पेका घर बयान कीता है ऐस लोक नूं। साडी आत्मा नूं ए लोक भी छड्डना पिया, पर लोक दे अंदर परमात्मा पति दा घर मिलिया ना, ते फिर ओ आत्मा जाएगी किथे? ए शरीर आत्मा नूं छड्डना पैंदा है। असीं तीन चीजां दा सुमेल चल रहे हां, साडे पास तन है, साडे पास मन है, ते तीसरी साडे पास आत्मा है। तिन्हां चीजां दा सुमेल ही असीं चल रहे हां। चलो मैं आरंभ दे अंदर एक होर बेनती करदा चला। तन दा अपना फल, मन दा अपना फल, ते आत्मा दा अपना फल वखो वखरे तिन्ना दे फल ने, और वखरियां वखरियां ही तिन्ना चीजां दियां गुलामियां ने, वखरे वखरे बंधन ने। तन दे बंधन वखरे ने, मन दे बंधन वखरे ने, आत्मा दे बंधन वखरे ने, तिन्ना दे रोग वखो वखरे ने। खैर जो मैं बेनती कर रहा सां, साडा तन तन नूं फल लगदा है औलाद पैदा करनी। तन कोलों तन ही पैदा हुंदा है, होर कुछ भी नहीं। धीआं दा जन्म हुंदा है, पुत्रां दा जन्म हुंदा है तन करके। मन नूं फल मिलदा है ज्ञान दा, और जद मन नूं ज्ञान दा फल मिल जांदा है, फिर इस तों अगे चल के आत्मा नूं फल लगदा है रब्बी रस दा, परमात्मा दे रस दा। जिस मनुख दे मन नूं ज्ञान दा फल नहीं मिलिया, उहदी आत्मा नूं रब्बी रस दा फल भी नहीं लगेगा। शरीर दे संबंध विच कोई प्रूफ पेश करना, कोई सबूत पेश करना कि शरीर हुंदा है, शरीर इस तरह दा हुंदा है, कोई लोड़ नहीं, क्योंकि शरीर अपना भी वेख रहे हैं, ते शरीर प्रकृति दे अंदर दूसरियां दा भी वेख रहे हैं। मन दे संबंध विच भी सबूत पेश करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि मन दे संबंध विच असीं रोज रोज गल करदे नजर आ रहे हैं। अज मेरा मन मनदा सी मैं कुछ खा लवां, मैं बना के खा लिया। मेरा मन करदा सी गुरुद्वारे चला जावां, ते मैं आ गया। मन करदा सी अज गुरुद्वारे नहीं जाना, ते मैं नहीं आया। मन करदा सी अमृत वेले उठा, मैं उठ पिया। मन करदा सी सुता रवां, ना उठा, मैं नहीं उठिया। मन दी गल तुसी वार वार करदे रहिंदे हो, मन दी चर्चा वार वार रसना दे उत्ते आउंदी रहिंदी है। तन दा सबूत पेश करन दी लोड़ नहीं, मन दा सबूत पेश करन दी लोड़ नहीं। मन महसूस करन दा विशा है, ते तन इना दो अखां दे नाल वेखन दा विशा है। नंबर तीन दे उत्ते बचदी है आत्मा। आत्मा ना ते वेखन दा विशा है, इना दो नेत्रां दे नाल आत्मा दिसदी नहीं है। आत्मा ना मन वांग महसूस करन दा विशा है, आत्मा है केवल विश्वास दा विशा। हुणे महसूस भी नहीं हुंदी, इना दो अखां दे नाल

जिन सिरिया तिने सुवारिया पूरी कोई करामात आप सिरजन हार तारिया सिखी अत संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारा वारिया जिनी तू सेविया पाओ कर

तद जप आदि सच जोगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे

वो डूबदे पत्थर तारे जियड़ा अग्न बराबर तपै पीतर वगै काती परनवत नानक हुकम पछाड़ै सुख होवै दिन राती परनवत नानक हुकम पछाड़ै सुख होवै दिन राती खम अवगुण भरे एक गुण नाही

अकाल मूरत अजूनी सै पंगुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच खैति सच नानक होशी सच

आठ पहर गुण गावा तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजै बंदगी कवन बदाई कह सकों दे अंत गुनिता कर कृपा मोहे नाम देखो नानक दर सरिता कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर सरिता परम सम्मान योग युग युग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहे मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों अज धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज उन्हां दा प्रकाश दिवस आप जी मना रहे हो अमृत गुरबाणी दा कीर्तन आप जी ने बड़ी भावना श्रद्धा नाल गुरमुखां तो सरवण कीता है। आओ आप धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी दी टेक लैके बैठे हो सतगुरु जी दे पावन पवित्र इतिहास और गुरबाणी दा जो सिद्धांत है इस दी विचार आप संगत दे समक्ष अर्ज करनी है। एकाग्रता दी दात बख्शो धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह आप ही सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के भावना नाल अपने पवित्र बचना दी विचार आप ही करा लवो करो कृपालता गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी विचों भाई साहिब जी खुरां ने कीर्तन दी समाप्ति ते जो अमृत बचना दा कीर्तन सरवण कराया है धन गुरु अमरदास महाराज हजूर दे मुख तो उचारण कीती हुई अमृत बाणी राम कली राग अंदर आनंद साहिब दी एक पौड़ी का कीर्तन आप ने सरवण कीता है ते अक्सर ये पाठ आप जी अमृत वेले सरवण भी करदे हो पर धन गुरु अमरदास जी ने कृपा करके इस पौड़ी विच तीन बचन कहे ने। पहला बचन ते कीता ने के आओ इकट्ठे हो के अपने सतगुरु जी दी पवित्र गुरबाणी नू गायन करिए शब्द वरते है सच्ची बाणी नू